FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की षष्ठी तिथि तदनुसार 27 मई सन 2026 इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 6 बजा चाहती हैं। अब आप सुनेंगे समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा

0: कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर की महिमा अपरंपार है, कण कण में व्याप्त है भगवान। हे प्रभु, तुम्हें शत शत नमन। भक्तजन तुम्हारी शरण में आए हैं, क्योंकि प्रभु दर्शन की प्यासी हैं अखियां।

प्रार्थना एक ऐसा साधन है जिसे अपनाने से मानसिक शांति मिलती है, तनाव दूर होता है और हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं, जिससे हम आशावादी होते हैं और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए आओ हम भजन करें।

प्रभु की वंदना हमें यही सिखाती है कि सभी का सम्मान करें, सम्मान देना सीखें। कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जो बाहरी उपलब्धियों से अधिक भीतर के मनुष्य को बदलते हैं। ऐसे में यदि एक सार्थक संकल्प लेना हो तो कुछ ऐसा हो सकता है, मैं प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा जिससे उसे अपने सम्मानित और मूल्यवान होने का अनुभव हो। यह बहुत छोटा संकल्प लगता है, पर धीरे धीरे यह दृष्टि बदल देता है। हम लोगों को उपयोगिता, पद, लाभ या पहचान से नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में देखने लगते हैं, क्योंकि रचनाकार की रचना है हम सभी। इसी संकल्प को हम एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, ये कहते हुए कि मैं प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुककर अवश्य सोचूंगा या सोचूंगी कि मेरे शब्द किसी के मन को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। यकीन मानिए, ऐसे छोटे छोटे संकल्प आपके भीतर की मनुष्यता को बुलंद करने में सक्षम है, और तभी हमारी वंदना, हमारी प्रार्थना सफल होगी।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस का।
1: एपिसोड नंबर 237।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान, स्वर सुरेश वाडकर का था और संगीत सतीश भाटिया का। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आपने सुना देश गान और अब सुनिए कार्यक्रम रूपरेखा। पहले आज की तिथि, आज बुधवार है। विक्रमी संवत 2083 के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आप सुनते हैं सुबह 7:10 पर। दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे होगा सुबह 8:30 बजे। सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय आपका जाना पहचाना सुबह 10 से 11 बजे तक। आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे जल ही जीवन है, इसे अवश्य बचाए, क्या है उदय शुभांकर चिन्ह और आधार में इसकी उपयोगिता। साथ ही आपको आपकी पसंद का गीत तो सुनवाएंगे ही, इसके लिए आपको मिलाना होगा केंद्र का दूरभाष नंबर 01744-221-322।

शाम 6:20 पर गीता संदेश में आज आप सुनेंगे चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 9-13 की व्याख्या। व्याख्या करेंगे डॉक्टर रामचंद्र। किसान भाइयों का कार्यक्रम अन्नदाता होगा शाम 6:30। ग्राम संसार ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:00। रात्रि 8:00 आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हम किसी से कम नहीं के अंतर्गत दिव्यांग अनिल से दीपक की बातचीत। लोकगीत का कार्यक्रम बाजा नगाड़ा होगा सुबह 7:40 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि सुनिएगा सुबह 9:30 पर। शाम 7:45 पर प्रस्तुत करेंगे गुलदस्ता। गाने नए पुराने ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:05 पर। शाम 7:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जय जवान और रात्रि 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम चांदनी रातें।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, उसके बाद 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

पूर्व आईपीएस अधिकारी बात। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेश मंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by VC Pramod.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए का
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
1: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
0: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
1: वाजी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
0: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है।
1: जी,
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
1: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
0: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
1: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
0: जी,
1: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
0: जैसे
1: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
0: जी,
1: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
0: जी, इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
1: जी,
0: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
1: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो यह है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहां तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
0: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
1: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
0: हाँ, वो क्या?
1: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
0: ये घटना क्या थी?
1: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओ, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
1: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
0: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
0: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क,
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
1: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
7: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
6: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
7: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
6: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
8: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
7: क्या बात है,
8: सुनकर ही जोश आ गया।
7: हाँ
8: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
9: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
5: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
10: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
5: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
11: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
12: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
11: अरे देख लेंगे।
5: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
13: हमला करो, दुर्गा माता की जय,
5: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
14: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
15: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
14: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
15: धन्यवाद।
5: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर। अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।

0: श्याम जी, श्याम जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नहीं नहीं, तू बीवी बचवा रहा है, पीछे हट।
0: नहीं लेकिन श्याम जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
0: श्याम जी, श्याम जी।
2: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं नहीं,
2: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
3: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
2: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम बाज्याय नगाड़ा। हमारे आज के कलाकार हैं महावीर शर्मा।

0: be.
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

तो कोई आप बरस राज सिंह न्यू जान दरस करस छोटे बड़े का कायदा हो स इन बातों में फायदा चाहिए अच्छे गुण का राजा ये काम सुधार का।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा। हमारे आज के कलाकार थे राज सिंह। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद 8:15 बजे अंग्रेजी में। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
6: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार

0: वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइज

0: राइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। सेंटर फॉर्म्स हाई लेवल कमिटी टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंज कॉज्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन एंड अदर रीजंस। सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट टुडे ऑन पिटिशंस चैलेंजिंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
2: The Supreme Court will today pronounce its judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rules done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Surya Kant and Justice Joymala Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenging the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950 and the rules framed thereunder. Over the course of the proceedings, the Supreme Court issued interim directions designed to promote transparency and mitigate hardship among voters impacted by the SIR exercise across various states and union territories. The poll body had initially identified 11 documents for verification purposes. However, the apex court later directed the inclusion of Aadhaar as an additional document for the SIR process. Most of the petitions were filed in June last year after the ECI decided to conduct an SIR in Bihar. The exercise was subsequently extended to multiple states and UTs, including West Bengal, Kerala and Tamil Nadu. The poll body defended the exercise before the apex court, contending that the revision was aimed at ensuring the purity of electoral rules and preventing duplication or inclusion of ineligible voters. After hearing the parties, the CJI Surya Kant-led bench reserved its verdict on Jan 29th. Central Board of Secondary Education, CBSE, has clarified that there has been no security breach in its actual on-screen marking system used for evaluation of answer books. The board said that the URL http://cbse.onmarks.co.in is the testing site only with sample data for internal testing and review purposes. More from our correspondent.
1: The Central Board of Secondary Education stated that the URL circulating on social media is different from the portal used for the evaluation of answer books. It noted that the system has been implemented for enhanced transparency in assessments with strong grievance redressal mechanisms. Refuting claims of any security breach on its actual on-screen marking system, CBSE reassured all concerned that safeguards are in place to ensure the integrity and security of the evaluation platform. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIRNewsAlerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. President Draupadi Murmu will visit Nathula Pass in Sikkim this morning on the second day of her visit to the state. The president will interact with soldiers stationed at Nathula, where senior army officers will brief her on various activities in the area. She will also visit the Baba Harbhajan Shrine. Later in the day, President Murmu will award degrees and medals to students during convocation ceremony of Sikkim University at Manan Kendra in Gangtok. Nearly 14,000 degrees across 33 departments will be awarded, along with 285 gold and silver medals to meritorious students, which include 199 women. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert predicting heat wave to severe heat wave conditions over Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. The weather agency has also forecast heat wave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh,

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम में। आज सुनिए सुबह सवेरे संध्या के साथ।

साथियों, आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसी ही एक बेटी ने हमें गौरवान्वित किया है। ये है मेजर अभिलाषा बराक। लिबनान मिशन में मेजर अभिलाषा ने बिखेरा भारतीय सेना का जलवा। अब यूएन इन्हें सम्मानित करेगा खास अवार्ड से। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सेवा दे रही भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर यानी संयुक्त राष्ट्र सैन्य

लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बताना है मेजर अभिलाषा बराग हरियाणा के किस जिले से हैं? आपको उत्तर देना है 8:45 तक एसएमएस द्वारा। नंबर आप जानते ही हैं 94-660-21-336। फोन नंबर दोबारा सुन लीजिए 9466-021-336। प्रश्न एक बार फिर, मेजर अभिलाषा बराग हरियाणा के किस जिले से हैं?

जनता को जगाने के लिए महिलाओं को जगाना आवश्यक है। जब वे सक्रिय हो जाती हैं, तो परिवार, गांव और राष्ट्र भी सक्रिय हो जाते हैं। ये कहना था देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। साथियों, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन सन 1964 को उनका निधन हुआ। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। नारी शिक्षा, सामाजिक एकता और वसुधैव कुटुंबकम के समर्थक थे। पंचशील का सिद्धांत और गुट निरपेक्ष आंदोलन उन्हीं की देन है। पंडित नेहरू विश्व पटल पर भारत को सबसे ऊपर देखना चाहते थे।

साथियों, आज अपने कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे एक प्रश्न किया था। संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित मेजर अभिलाषा बराक हरियाणा के किस जिले से हैं? मेजर अभिलाषा बराक हरियाणा के रोहतक जिले से हैं। महिलाओं और किशोरियों के सशक्तिकरण और लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लिए उन्हें ये सम्मान आगामी 29 मई को दिया जाएगा। मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले ये पुरस्कार मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सिंह को 2023 में मिला था। और अब उन साथियों के नाम कार्यक्रम में शामिल करते हैं जिन्होंने आज प्रश्न का सही जवाब दिया है। पहला सही जवाब हमारे पास आया है रामनगर कैथल से सुनील दत्त, विनायक दत्त और आशा रानी का। अगले श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया ये हैं नाहन हिमाचल से योगी ठाकुर और रीमा ठाकुर। रामधारी अबाना, अनाया अबाना और ओजस अबाना आप हैं ढाणी कुतुबपुर हासी हिसार से। अगला सही जवाब है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा का। मोटाला महाराष्ट्र से आप हैं विजय सुरलकर और रत्नमाला सुरलकर। अगले श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया ये हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार खमरिया छत्तीसगढ़ से। ललिता सिंह और भगवान सिंह आप हैं सिलाई हिमाचल प्रदेश से। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल आप हैं योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अंबाला से। अगला सही जवाब है दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और इनके साथ हैं विश्वदीप येले। तन्मय सिंह, सिद्धांत सिंह आप हैं सिलाई हिमाचल प्रदेश से। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी और मधु गोस्वामी। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले आपने दोबारा मैसेज किया है, कृपया करके एक ही बार मैसेज किया करें। अगला सही जवाब नागल से इंदर राज और जगुड़ी से रणधीर बांगड़, इनके साथ है युगम। अगला सही जवाब है टिया और कृष्णा का हिमाचल प्रदेश से। कल्याण मुंबई से आप हैं किशोर हिबराले, सुजाता हिबराले और प्रतीक हिबराले। अगले श्रोता हैं जिन्होंने सही जवाब दिया ये हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। आखिरी दीवान मध्य प्रदेश से आप हैं रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर। अगला सही जवाब डेर पाटन गुजरात से धीरज वीर रवारी का। नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम आप हैं बग बुड़वा पथरिया से। अगला सही जवाब प्रकाश वर्मा, निखिल और प्रिंस वर्मा का छत्तीसगढ़ पलारी से। विक्रम योग भारती, संध्या सैनी, हरमन योग भारती, खुशप्रीत अम्बली आप हैं फालसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से। सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र से जगबाल हुडा, सुनेना और समीक्षा हुडा। अगला सही जवाब फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, हेयांश कुमार चंदन आप हैं सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से। बीपी गौतम, सरिता गौतम आप हैं एटा रोड गंज टुंडवारा उत्तर प्रदेश से। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू और दीवेंद्र प्रताप साहू। अगले श्रोता हैं बलकरण वर्मा और अंजनी ज्योति वर्मा, ग्राम पंचायत बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेबा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल और वान्या सिंगरौल। डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम अनवर, शेख मोहम्मद कलीम अमीर खुसरो रोड गंज टोंडवारा से। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन और इनके साथ हैं मेघा आशीष राजा। अगला सही जवाब है सत्यनारायण शर्मा का कुरुक्षेत्र से।
गाडगी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से आपने लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे, दिलहरम गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, बलौदा छत्तीसगढ़ से। अगला सही जवाब छत्तीसगढ़ बोटसरा से वैभवी साहू और विभूति साहू का। रवि और इंदर आप हैं रानीगंज वेस्ट बंगाल से। अगले श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया ये हैं गौतम कुरुक्षेत्र से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, ध्वनि सानवी और समस्त छाबड़ा परिवार। कोरासी छत्तीसगढ़ से पवन क्रांति साहू, पंकज साहू और इनके साथ हैं सुष्मिता साहू। हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, सांगली से। अगला सही जवाब है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद का। उत्तम कुमार बका, श्वेता, केसु, तासु, अर्णब, सत्यम आप हैं पाकुड़ झारखंड से। अगला सही जवाब हमारे पास आया है, आपने स्थान का नाम नहीं लिखा है, आप हैं विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक और मयंक मूनत। अगले श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया ये है सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीना ढिंगरा, कृतिका, विशु और विजय। अगला सही जवाब संजीव कुमार, अमन कुमार का, कुंकनी करनाल हरियाणा से। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार कांबोज, वंश और भुवेश कुमार कांबोज। तराई माल रायगढ़ से अंशु साहू और निशु साहू। अगला सही जवाब है सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरब खुराना, एसके पप्पी का, आप हैं एमएलबी रोड ग्वालियर से। वीरेंद्र कुमार लाडवा, लाडवा सिंह है, आपके साथ हैं श्वेता और गोविंद। अगला सही जवाब है आबाद खान, लीवा मलिक, मोहम्मद जोहान सैफी और मोहम्मद जाहिद अली सैफी, आप हैं छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से। अगले श्रोता हैं नजफगढ़ नई दिल्ली से सुमन, गौरव शर्मा, सौरभ शर्मा, मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी, आप हैं रेलवे रोड गंज टोंडवारा कासगंज उत्तर प्रदेश से। जयश्री और सुनील बेंगलोर से। अगला सही जवाब है रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार साहू का। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से मेहराज जहां, गुलाम साबिर राही और ताज मोहम्मद अंसारी। कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा उत्तर प्रदेश से। नेहरू चौक पैठन से आप हैं सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राजेश साबले पाटिल। अगले श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया ये हैं कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से अंग्रेज, संदीप दत्ता और बंसी।

किशोर की नगरी खंडवा से डीपी सैनी और गौरव सैनी। अगला सही जवाब बांडीवाला फजलिका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया और बेबी गरिमा बगड़िया, इनके साथ हैं रजत। गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन योगेश और योधव कड़वासरा। मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शाहनवाज सरफराज अब्बासी और अब्बासी परिवार की सभी सदस्य आप हैं ऊपरकोट बुलंदशहर से। अगले श्रोता हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से पेंटर विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से आप हैं योगेश गुजराती। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और इनके साथ हैं करुणा वर्मा। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज गिरिडीह झारखंड से। अगला सही जवाब है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, निमित और दिशानिका। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्राव्या रामटेके। अगला सही जवाब दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी का। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी, शंटी और लाडी। अगले श्रोता हैं सूफिया हुजरे, चांदवी, किरत, आप हैं सांगली से। अगला सही जवाब है करनाल से रायसन करनाल से रजनीश बत्रा और कबीर का। डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये। अगला सही जवाब हमारे पास आया है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और इनके साथ हैं सोमनाथ कालिया, नरेश मल्होत्रा डीटू, भावना मल्होत्रा, अनिल कटारिया खैल बाजार पानीपत से। अगले श्रोता हैं लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा और विशाल सपकाल। रश्मि झरना राजकोट गुजरात से। गांव बाघा मुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, गायत्री देवांगन, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। जवाहर नगर दुर्ग से आप हैं आरसी कामड़े और इनके साथ हैं करुणा कामड़े। अगले श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल, जमनिया गाजीपुर से। राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और राघव उगाला अंबाला हरियाणा से। सुदर्शन शाह और इनके साथ हैं पल्लवी शाह, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा और यश मंसूरी। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। मोहम्मद फरमान और सलमान आप हैं मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
2: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
2: विश्वास की आवाज।

अपना धार्मिक महत्व रखता है। हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं ईद उल जुहा की। आज है बकरीद। बकरीद का असली संदेश है इच्छा, घमंड, ईर्ष्या और नफरत को त्यागना। इस्लामी वर्ष का आखिरी महीना जिलहिज्जा अपने साथ अनगिनत रहमतें, बरकतें और आध्यात्मिक संदेश लेकर आता है। इन्हीं दिनों में दुनिया भर से लाखों मुस्लिम हज यात्रा के लिए मक्का पहुंचते हैं। इसी महीने मुस्लिम समाज ईद उल जुहा यानी बकरीद मनाता है, हजरत इब्राहिम की याद में कुर्बानी देता है। ईद उल जुहा मनाने के पीछे हजरत इब्राहिम और उनके पुत्र हजरत इस्माइल की महान कुर्बानी की घटना जुड़ी हुई है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को सपने में अपने बेटे को कुर्बान करने का आदेश दिया। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की इच्छा के आगे सिर झुका दिया और हजरत इस्माइल ने भी खुशी खुशी खुद को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार कर लिया। जब हजरत इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए लेटाया, तब अल्लाह ने उनकी जगह एक तुम्बा यानी जानवर भेज दिया। उसी याद में मुस्लिम समाज हर वर्ष ईद उल जुहा पर कुर्बानी करता है। यह पर्व त्याग, धैर्य, माता पिता की आज्ञाकारिता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश देता है। वही हज इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभों में से एक है और हर उस मुस्लिम पर जीवन में एक बार अनिवार्य है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। मुस्लिम हज के लिए मक्का इसलिए जाते हैं ताकि वे काबा शरीफ की जियारत कर सकें और हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा से जुड़ी परंपराओं को निभा सकें। साथियों, अपने पालनहार की इच्छा के सामने अपनी इच्छाओं, घमंड, ईर्ष्या और नफरत को त्याग देना ही असली इबादत है, असली सफलता है। ईद उल जुहा और हज के संदेश को केवल धार्मिक रस्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक भलाई, मानवता और भाईचारे से जोड़ना चाहिए।

साथियों, आज की भागदौड़ और व्यस्त जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी हो गया है। आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसे खुलकर हंसने तक की फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन हंसी से दूरी बनाना जीवन में अनेक परेशानियों को जन्म देता है। वर्तमान समय में कदम कदम पर तनाव, चिंता, मानसिक दबाव देखने को मिलता है। ऐसे माहौल में हंसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। हास परिहास के बिना जीवन निरस और उबाऊ हो जाता है, जबकि हंसी जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हंसना शरीर और मन दोनों के लिए जरूरी है। यह एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है और हंसने से न केवल मन हल्का होता है, बल्कि कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति अपने दुखों और चिंताओं को भूलकर आत्मिक सुख का अनुभव भी करता है। खुलकर हंसने से शरीर का आंतरिक व्यायाम होता है, जिससे शरीर और मस्तिष्क दोनों सक्रिय और चुस्त बने रहते हैं। हंसी के दौरान रक्त संचार तेज हो जाता है और पाचन तंत्र अधिक कुशलता से कार्य करने लगता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और दूषित वायु बाहर निकलती है। हंसते समय चेहरे और पेट की मांसपेशियों की हल्की मालिश अपने आप हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रहती है। इसके साथ ही स्नायु तंत्र की जकड़न भी दूर होती है और शरीर में नए उत्साह का संचार होता है। साथियों, हंसने से थकान, मानसिक तनाव और शारीरिक दर्द भी कम हो जाता है। तो जरूर हंसिए, समय निकालिए, बहाने ढूंढिए, पर हंसिए जरूर। जोर से ठहाका लगाकर हंसने से यकृत, फेफड़े, हृदय, पेट और वक्ष जैसे महत्वपूर्ण अंग अधिक सक्रिय होकर बेहतर ढंग से काम करने लगते हैं, और यही कारण है कि हंसी को शरीर की आंतरिक जॉगिंग भी कहा जाता है।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: Prem Gali Kholi number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: साथियों, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के सभी कार्यक्रम और स्वस्थ रहिए। और कार्यक्रम कैसा लगा जरूर हमें बताइए। हमारा ईमेल पता है आपकी बात आकाशवाणी@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM बैंड पर। हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि।

0: अभी आपने सुना गुलाम अली को, आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज।

विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

अभी आपने सुना साबरी बंधुओं को। इसी के साथ गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: वाला, तुम गाना में हमको हराया, हाँ, तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: इसे काहे को झगड़ा करना जी?
2: हाँ।
1: बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में अड्डी काहे को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है, ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म खानदान।

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन

ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी, तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थी, ये रास्ते ही प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा, सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1976 नागिन, सन 1979 जानी दुश्मन और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया, रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हिरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम में। साथियों, आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे जल ही जीवन है इसे अवश्य बचाएं, और बात करेंगे क्या है उदय शुभांकर चिन्ह व आधार में इसकी उपयोगिता। अपनी पसंद का गीत तो आप सुनेंगे ही कार्यक्रम में, इसके लिए आपको मिलाना होगा केंद्र का दूरभाष नंबर 01744-221-322। तो मिलाइए फोन, सुनिए अपनी पसंद का गीत, कीजिए हमसे बातें। विषय आप जान ही गए हैं, जल ही जीवन है और क्या है उदय शुभांकर चिन्ह और आधार में इसकी उपयोगिता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम जी, मैं बारना गांव जिला कुरुक्षेत्र के सतपाल टाइल बात कर रहा, रिटायर्ड कर्मचारी डाकघर से।
0: सतपाल जी से बात हो रही है, बारना कुरुक्षेत्र से,
1: जी।
0: और आप डाक विभाग से सेवानिवृत्त बात
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: अधिकारी
1: जी, मेरे
0: जी।
1: को 3 साल के लगभग रिटायरमेंट हो चुकी है।
0: तो अब आपको कैसा लग रहा है? पहली कॉल आप ही की लगी है कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: चलो मैम जी, मैं भी आपका इस चीज का धन्यवाद करूंगा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा जो मेरी पहली कॉल लगी। मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को।
0: आपकी आवाज से ही आपके उत्साह का पता लग रहा है। तो
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: सतपाल
1: जी।
0: जी, आज हमने कार्यक्रम में चर्चा का विषय रखा है, जल ही जीवन है, इसे अवश्य बचाएं। तो आप इस बारे में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: ये तो बहुत अच्छा मैटर रखा आपने। जल जल के बिना तो मैं बताऊं जी आपको, कुछ भी नहीं है। जल जल है तो सब कुछ। अगर हमारे पास जल ही नहीं है तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं बताऊं जी आपको, जल के बिना क्या है। जल तो एक संध्या जी, एक ऐसा है, जन्म से जिस टाइम बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेके और जब तक आदमी नहीं जाता, जब तक इसकी आवश्यकता पड़ती है हमें, यह तो बात मानोगे। और बाकी मैं तो गांव में इधर उधर जाता हूँ, कोई टूटती खाली वगैरह खाली चलती हो या इधर उधर, जब भी कहता हूँ गांव में भी इस चीज का प्रचार करता हूँ। अगर शहर सूर में जाता हूँ या इधर उधर जाता हूँ तो मैं तो यही प्रचार करता हूँ, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूँ। मैं बताऊँ आपको,
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि जल ही जीवन है, और जल पूरा जीवन, जो आपने कहा कि शुरू से लेके अंत तक जल की अहमियत है हमारे जीवन में, और हमारे शरीर का 70% हिस्सा लगभग जल का ही है, और धरती पर भी इतना ही प्रतिशत है।
1: हाँ
0: लेकिन
1: जी, जल के
0: सतपाल
1: बिना
0: जी,
1: तो
0: एक जानने की बात, बहुत ज़रूरी बात है कि जो हमारे लिए उपयोगी जल है उसकी मात्रा बहुत कम है। 0.02 से 3% ही है, बहुत कम, जो उपयोग में लाया जा, पानी तो बहुत है पर जो काम का है वो
1: बिल्कुल
0: बहुत कम है, इसीलिए इसको बचाना जरूरी है। तो ये
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सभी
1: बिल्कुल
0: के लिए एक संदेश है, घर से लेकर बाहर तक, जहां भी आपको लगे आप योगदान दे सकते हैं जल को बचाने में, तो जरूर दीजिए।
1: मैं तो
0: अब
1: जी अपनी तरफ से अपने बच्चों को भी, अपने गांव वालों को भी, जो नजदीक इधर उधर गांव है जहाँ भी जाता हूँ, नहीं जल के बारे में तो पूरा पूरा हम पूरा ख्याल रखते। जल के बिना तो हमारे पास कुछ है ही नहीं बहन जी। मैं बताऊँ आपको,
0: सही बताया आपने। और अब जल्दी से बता दीजिए गाना कौन सा सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
1: वो हमारे दोस्तों के नाम, क्या कह रहे हो, दोस्तों के नाम,
0: दोस्तों के नाम भी ले लीजिए, और गीत बता दीजिए आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तो ये है गाना।
0: आपकी फरमाइश पूरी किए देते हैं, दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं तो जल्दी से उनके भी नाम शामिल
1: हाँ,
0: कर लीजिए
1: मेरे
0: कार्यक्रम
1: दोस्त
0: में।
1: हैं जी, अपना रामेश्वर दास वर्मा जी, रामपाल चैन जी, राजू कश्यप जी, राम रतन कश्यप जी, हमारा बेटा है संजय तायल, वो भी इच्छुक है गाने का, मेरे जैसे मैं सुनता हूँ ऐसे वो भी इच्छुक है संजय
0: आप
1: तायल।
0: सब रेडियो सुनते हुए अपना काम करते हैं, बहुत अच्छा लगा जान के। और अब आपकी फरमाइश पूरी किए देते हैं, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद जी संजय जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: मैडम जी। नमस्ते जी, कौन सी सखी जुड़ी है नमस्ते कुरुक्षेत्र कार्यक्रम से?
1: मैम मेरा नाम नाजमीन है।
0: नाम दोबारा बताइए।
1: नाजमीन।
0: नाजमीन से बात हो रही है। नाजमीन, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कितने दिनों बाद फोन लगाया आपने?
1: मैम हमने 2 महीने के बाद फोन लगाया।
0: 2 महीने के बाद, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही ध्यान रखा करो। और क्या करते हो नाजमीन?
1: मैम हम लिफाफे बनाते हैं।
0: लिफाफे बनाने का, और साथ में रेडियो सुनते रहते हो ना, तो मोबाइल ऐप पर आवाज आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है
1: जी?
0: और अभी
1: सुनते हैं मैडम जी।
0: अच्छा, रेडियो सेट्स पर सुन रहे हो आप, तो आप कहाँ से बोल रहे हो ये तो बताया ही नहीं आपने।
1: मैम मैं गांव अखबार से बोल रही हूँ, जिला
0: सहारनपुर से बात हो रही है नाजनीन से। नाम भी अच्छा है और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। नाजनीन, आज गाना कौन सा सुनना चाहोगी?
1: मैम फुटपाथ का सुना
0: दियो। फुटपाथ मूवी का गीत आपको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैडम आपका जाना पहचाना श्रोता गाँव श्यामगढ़ से मुस्तकीन।
0: श्यामगढ़ से मुस्तकीन जी से बात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं मुस्तकीन जी, कामकाज कैसा चल रहा है?
1: बस जी मैडम, देखो काम डॉक्टर आ देना, बुजुर्ग भी आ देना, बच्चों के साथ पोता पोते के साथ खेल लेता हूँ।
0: तो ये भी तो काम है ना। अब रिश्ते देखिए आजकल कितने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। लोग तो मोबाइल के चलते रिश्तों को दरकिनार कर रहे हैं और आप ये बहुत जरूरी काम कर रहे हैं परिवार के साथ
1: और
0: अपना
1: समय। एक बात, एक जानकारी और जानना चाहूँ सभी श्रोताओं को। कल एक मेरे भतीजे का इंतकाल है, 25 साल का था।
0: तो बहुत दुख की बात। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दुख की बात है ये सभी के लिए।
1: तो मैडम मैं सभी श्रोताओं श्रोता आप सभी को जारी रहे, उसके लिए दुआ करें जो ऊपर लोग शांति दे।
0: सभी की तरफ से, अपने श्रोताओं और पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये बड़ी दुख की घड़ी है आपके लिए, ऐसे में भगवान आपको हिम्मत दे, क्योंकि ये जो समय है इसमें सिर्फ आप अपने आप को शांत रखें।
1: मैडम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
0: आप हिम्मत से काम लीजिए और इस समय पूरा परिवार आपके साथ है, आकाशवाणी परिवार और श्रोता परिवार।

0: अब मस्तकीन जी आज गाना कौन सा सुनेंगे कार्यक्रम में?
1: वर्दे फिल्म का सुनना जी, मेरे इबादत में इबादत करते हैं, वर्दे रहे सलामत चलती खिदमत करते।
0: आपकी फरमाइश पूरी किए देते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं नमस्ते कुरुक्षेत्र कार्यक्रम से?
1: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, बिहार शरीफ जिला नालंदा से। हाँ
0: अनवर बिहारी जी से बात हो रही है, बिहार शरीफ नालंदा से।
1: जी,
0: अनवर जी, कार्यक्रम कौन कौन से सुनते हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के?
1: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के यही कार्यक्रम अभी जो चल रहा है मैं सबसे ज्यादा सुनता हूँ। और तो मैं बिजी रहता हूँ अपने काम में, फरीदाबाद हरियाणा में जॉब करता हूँ।
0: अच्छा, जॉब
1: दिन भर
0: आप
1: कंपनी में रहता हूँ। हाँ।
0: जॉब आप हरियाणा में करते हैं और
1: मैं छुट्टी
0: अभी
1: पे घर आया हूँ।
0: तो अब गीत कौन सा सुनेंगे जल्दी से बता दीजिए, गाना आपको सुनवा दें।
1: फिल्म पाकिजा का नगमा, चलो दिलदार चलो चांद के पास चलो हमें तैयार चलो। और गीत की मुनासिबत से एक शेर हाजिर करता हूँ कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है सांसों और आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।
0: क्या बात है, और आपने जल्दी जल्दी एकदम अपने शेर को जल्द अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छा लगा आप से बात
1: शुक्रिया
0: करके। और अब आपकी फरमाइश पूरी किए देते हैं, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: शुक्रिया।

साथियों, अब बात करते हैं क्या है उदय शुभांकर चिन्ह और आधार में इसकी उपयोगिता। श्रोताओं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा उदय नाम का एक आधिकारिक आधार शुभांकर प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच आधार सेवाओं जैसे नामांकन, अपडेट, प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन की जानकारी को सरल और सुलभ बनाना है। आधार में उदय शुभंकर की उपयोगिता है सरल संचार के लिए। यह लोगों को आधार के नए तकनीकी अपडेट और इसके जिम्मेदार उपयोग को आसान भाषा में समझाने में मदद करता है। इससे विश्वास और जुड़ाव पैदा होता है। इसे एक दोस्ताना और सकारात्मक किरदार के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो सभी उम्र के लोगों, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को डिजिटल पहचान और सुरक्षित प्रमाणीकरण के प्रति जागरूक करता है। इससे जागरूकता अभियान को भी बल मिलता है। इसका उपयोग उदय द्वारा विभिन्न शैक्षिक सामग्री, सोशल मीडिया अपडेट और जन जागरूकता कार्यक्रमों की ब्रांडिंग के लिए किया जाता है।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: हेलो,
1: नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार जी। बड़ी बुलंदी सी आवाज लग रही है, किनकी है?
1: बुलंदी की आवाज कैसे जब बहन आज कॉल लगी, आज बुलंदी की आवाज होगी।
0: कॉल लगी, कोशिश करते रहिए, कॉल तो लगेगी ही, है ना?
1: कोशिश कर रहा था सवेर का 10 बजे से।
0: 10 बजे से
1: और खेत में काम भी कर रहा बहन जी,
0: और काम के साथ साथ आपकी कोशिश भी कामयाब होगी, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी। आपने जो जल के ऊपर विषय रखे है, बहुत अच्छा विषय है बहन जी।
0: जल को बचाना बहुत जरूरी है।
1: जल है तो कल है बहन जी,
0: ये सब स्लोगन इसीलिए बनाए गए हैं। जल है तो कल है, लेकिन लोग तो नहीं समझते ना, सोचते हैं फ्री का पानी।
1: कुछ दिन में समझ जाएंगे जब पानी नहीं मिलने का पीने को।
0: हाँ तो वो तो जब पानी ही नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा, ये जान के समझ के भी बेसमझी कहें तो करते हैं, घर पे भी करते हैं।
1: हाँ घर में करते हैं बहन जी,
0: बाहर में भी देखिए, अब लगता है कि फ्री में आ रहा है, पानी का टाइम है तो उसको टैप ही नहीं बंद करेंगे, चलता रहेगा नलका, मतलब
1: चल रही है बहन जी। तो
0: और कहीं जरा सा खराब भी हो जाए, पानी रिस रहा है, टिप टिप की आवाज भी आ रही है, तो उसको ठीक करवा लीजिए। कम से कम आप बाहर भी जाते हैं तो कंप्लेन लिख के दे दीजिए, आपको नहीं करवाना है, किसी को रोक भी सकते हैं।
1: इस तरफ ध्यान नहीं देंगे हमारा समाज,
0: और देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक दिन
1: तो
0: ऐसा है, क्योंकि आज आपका काम तो चल गया, पर जो भविष्य में
1: आगे जो आने वाला कल है ना, उसका भविष्य देखना जी हमने,
0: उनके लिए सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जरूरी पानी है, जो हम काम के लायक है, वो बहुत कम है। पानी तो बहुत है, 70% है, लेकिन हमारे काम के लिए कम है। अरंदीर जी, आपके रेडियो सेट की आवाज जरा सा कम कर लीजिए, वो
1: मैं दूर कर देता हूँ बहन। हाँ, कॉल पे बात कर रहे जी, एक को वैसे उसमें रेडियो सुन रहे थी।
0: क्या बात है, दो दो फोन रखते हैं आप। चलिए,
1: ये जुनूनी ऐसा है बहन,
0: ये जुड़ाव है आपका आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के लिए।
1: सवेर से हो जाए 6 बजे से, यार अपना शाम के 11 बज जाते हैं,
0: तो अच्छी बात है। अपना काम भी करते रहिए और रेडियो तो जरूर सुनिए, क्योंकि जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी आपका होता है। और
1: ऐसे थोड़ा जीवन चलता रहता है, जो इंसान पे कोई टेंशन वगैरह से तनाव मुक्त हो जाए थोड़ा।
0: बहुत सही बात आपने फरमाया कि जो तनाव है वो भी कम हो जाता है, और लगता है कोई साथ में बात कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक जानकारी भी मिलती जा रही है और मनोरंजन तो हो ही रहा है, तो आप सक्रिय होते हुए अपना सारा काम कर सकते हैं ना। तो अब जल्दी से गीत बता दीजिए, आज गाना कौन सा?
1: धर्मात्मा मूवी का सुना दो बहन जी।
0: धर्मात्मा फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, और मेरे दोस्तों को जी
0: आपकी तरफ से सभी श्रोताओं का आपने अभिवादन किया, धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद बहन जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, नमस्कार जी।
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: कौन से श्रोता जुड़े हैं? नमस्ते,
1: मैं विक्रम बोल रहा जी, बुकाने से जी।
0: विक्रम जी से बात हो रही है। विक्रम जी, अब कार्यक्रम अपने समापन की ओर है, तो जल्दी से विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और फिर आपकी पसंद का गीत। तो आज हमारा विषय है जल ही जीवन है, इसे बचाएं। तो पानी बचाने के लिए कौन कौन से तरीके आप अपनाते हैं जिससे पानी व्यर्थ ना हो, ये बताइए जरा हमें।
1: मैं तो ये खेती करता हूँ जी। हेलो।
0: तो आपको तो ज्यादा महत्व पता है
1: हाँ
0: कि
1: जी,
0: फसल के लिए कैसे।
1: तो फसल के लिए जी हम धान लगाते हैं जी, बिना से जी BSR धान लगाते हैं जी।
0: तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि पानी को कैसे, हम किस फसल के लिए कितना पानी प्रयोग करना है।
1: हाँ
0: बाकी
1: जी,
0: लोगों को जो घर पे है या बाहर है, पानी यदि व्यर्थ कहीं भी आपको दिख रहा है तो उसके लिए हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। हम सब मिल के कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि जल है तो कल है। और अब
1: राम
0: जल्दी से गीत की बारी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज कार्यक्रम में?
1: तेरी गंगा मैली का जी।
0: कोई भी गीत सुनेंगे?
1: हाँ जी, कोई भी जी। ठीक
0: ठीक है, तो आपकी फरमाइश पूरी कह देते हैं। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है, धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: अभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे आबसार एल्बम से यह गजल, जिसे गाया महिमा ने, सरदार अंजुम ने इसे लिखा और सोमदत्त बट्टू ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है हिंदुस्तान क्लासिकल गजल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज है, हसरत त्रिमिजी ने इसे लिखा है और चित्ता रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोल और फैयाज शौकत के संगीत के साथ ये खूबसूरत सा नगमा।

नॉन फिल्मी गीत एंड गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजा हुआ और मन्ना डे के ही संगीत से सजे हुए इस नज्म को। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो कि है ये मिलन ख्वाबसा इस एल्बम से तलत अजीज की आवाज में। सरदार अंजुम ने इसे लिखा और तलत अजीज ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रहे थे ये नगमा, जिसे सवा अफगानी ने लिखा, इकबाल ने संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उषा टंडन की आवाज में दाग के द्वारा लिखे इस नगमे को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एल्बम गजल से एक गजल जो गाई है प्रतिभा सिंह बघेल ने। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा, राजू राव प्रमिला राव ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफी की आवाज में दानिश के बोलों के साथ इकबाल के संगीत के साथ सुन रहे थे हिंदुस्तानी गजल एल्बम से ये नज्म को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट के

0: करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमरीका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में। हर प्रतिदिन हम सजाकर लाते हैं यादों की महफिल किसी एक खूबसूरत सी याद के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के यादों की महफिल कार्यक्रम के इस खूबसूरत से नगमे को।

हम सुन रहे थे छोटी सी बात फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ और योगेश के बोलों से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा। आज हम सुनवा रहे हैं गीतकार योगेश की कलम से निकले हुए गीतों को।

हम सुन रहे थे अग्नि परीक्षा फिल्म से। यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में अधूरा आदमी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, योगेश के बोल हैं, राहुल देवर्मन का है संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: हम सुन रहे थे रजनीकांधा फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में योगेश के बोलों के साथ सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बे ख्याल हो कर यूं चूलिया किसी ने।
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
2: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

हम सुन रहे थे मंजिल फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और आरडी वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले हुए गीतों के साथ। अगला गीत हम सुनने वाले हैं किससे किसी से ना कहना फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, योगेश के बोल है, बप्पी लहरी का है संगीत।

हम सुन रहे थे अपने पराये फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज में योगेश के बोलों को, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, योगेश के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है चालबाज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सफर कितना सुरीला हो जाता है ना अगर सब साथ हो, और यही साथ अगर एक साथ हो तो मजा अलग ही आता है। आज की इबारत हमने लिखकर भेजी आपको, और उस इबारत को हम पढ़ना चाहते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वह इबारत नहीं पढ़ी है। तो चलते हैं उस इबारत की ओर। हमने इबारत लिखी कि एक लड़की बोली, मेरे पास तो सब कुछ थोड़ा ही है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले पल पर जो मेरे लिए खुशियों का ताल बन जाएगा, और नदियां जैसे अपनी धारा के संग चलती है, मेरी जिंदगी का सफर भी चलता रहेगा। अगर उठेंगे सबके कदम दूसरों की मदद के लिए तो जीवन के दिन कहाँ छोटे रह जाएंगे। तो चलो किसी की मुस्कुराहट के लिए भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे। और यही बात याद रखते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुंदर संदेशों की तरफ जो कि भेजे हैं आप सबने हम तक। हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कलम को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनकी ही लिखी हुई कुछ बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की उम्मीद, विश्वास, इंसानियत का संदेश देती है। जैसे नदियां निरंतर बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अगर हम अपने कदम दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाएं और किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें तो जीवन के छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी इस बात की चिंता छोड़कर सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारी एक और श्रोता लिखते हैं, मनुष्य के जीवन का सफर नदी की बहती धारा के समान निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हम इसे प्रवाहमयी जीवन के रूप में देख सकते हैं, जहां ठहराव को जीवन के अंत के रूप में देखा जाता है। जैसे कि नदी की धारा सुख दुख रूपी किनारों के साथ ले अपनी गतिशीलता बनाए रखे हुए हैं, हम अपने लक्ष्य सागर में समाहित को प्राप्त करती है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कहीं नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, हर चुनौती में एक नया सबक तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का सफर कोई मंजिल नहीं बल्कि हर पल एक अनुभव है, इसीलिए अपनी गति और सरलता के साथ जिए। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन की सच्चाई को बखूबी बयां करता गद्यांश संतोष का आनंद दर्शा रहा है। जहां थोड़े में खुशियों की ताल जीवन के अविरल चलते सफर में आने वाले भविष्य को किसी जरूरतमंद की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, संदेश यही है। पर इसके साथ आपने गाने भी चुने हैं, तो आइए देखते हैं आपके गाने और हमारे गाने मिलते हैं या नहीं। तो हर बार की तरह मेरे पास तो दो प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न बड़ा सरल सा है कि कुछ शब्द होते हैं जो शब्द एक जैसे होते हैं, यानी उनको पलट दो तो अलग

0: अलग हो जाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है, पर खुद बनते उतने ही अक्षरों से हैं। जैसे अगर मैं कहूं दया और उसका ही उल्टा हो जाता है याद, दया याद। अगर हम किसी पर दया करें तो वो हमें याद रखता है। ऐसा ही है राही और उसका हो जाता है हीरा, राही हीरा। तो जो राह में चलता जाता है वही हीरा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डिब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे के क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर, पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह रेल शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली DEMU रेलगाड़ी हरियाणा को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली यह रेलगाड़ी न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल संरचना के विकास की गवाह बनेगी बल्कि इतिहास भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत की दिशा में और भविष्य की परियोजनाओं को देखते हुए यह गाड़ी मील का पत्थर साबित होगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज भिवानी, तोशाम व कैरू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। फरीदाबाद स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एक 3 वर्षीय बच्चे में दुर्लभ बीमारी विस्कॉट एल्ट्रिच सिंड्रोम का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। यह ESIC स्वास्थ्य प्रणाली में इस प्रकार का पहला सफल उपचार बताया जा रहा है। विस्कॉट एल्ट्रिच सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवांशिक प्रतिरक्षा संबंधी बीमारी है जिसमें बच्चों को बार बार संक्रमण, त्वचा रोग, प्लेटलेट्स की कमी और रक्तस्राव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शाहबाद नगर पालिका ने सरकारी फीस तय समय सीमा के भीतर जमा न करवाने वाले 4 ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया है। इसमें SS सहकारी सोसाइटी सहित अन्य ठेकेदार शामिल हैं। नगर पालिका के सचिव बांबुल ने बताया कि संबंधित ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर सरकारी फीस जमा नहीं करवाई गई थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि काली सूची में डाले गए ठेकेदार नगरपालिका के किसी भी टेंडर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन

गदा मीना नामी बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं, और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा। तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे। तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफ़र में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नज़रिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियाँ और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही छोटे एक एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियाँ बड़े जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप ज़रूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी, ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु धूम, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मज़ा आया पढ़कर। ये सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे जी, बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या काए बौरात नर वा पाए बौराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा राह हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे हैं, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियाँ, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियाँ अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती दूसरों की कदम के लिए, अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठें तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियाँ, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफ़र चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफ़र की असली मिठास। जी बिल्कुल, और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो ज़रूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है, आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है, जरा सोचिएगा, है ना, जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है, प्रयास करो सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है, उस विषय को याद कीजिए। और चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है।

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज़ मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए, साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहाँ पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु, इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मज़ा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन में हम वापस चलते हैं हमारी सीखों के लिए। कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं मेरे पिताजी की दी हुई सीख कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही है। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज़्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य ज़रूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खो ना दूँ, इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं हमें बोला गया था चाहे ज़्यादा हो या बहुत कम मदद करो, पर लेने वाले की आँख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नज़र में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनकते सौगुने पढ़ा था। तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहली कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं, और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे ज़रूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे सफ़र फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज़ में, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। ये बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत को। और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आएँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी को कुछ दो ना दो, पर दो शब्द एक प्यार भरी मुस्कान दे दो। किसी को अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगे तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करूं, जिसे मैं आज तक निभा रही हूं। जी, आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज़्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूँ, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे, एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे, किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कहते थे, डरना तो बहुत गलत चीज़ है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह आना आहत हो, मेरी आत्मा में बसी है ये बात। वहीं पिता का अडिग मंत्र, व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूँ, इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत हूँ, इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूँ। बहुत सही बात कही है। पिताजी ने कहा था, बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में सीख गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहें आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून, बताइएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया, ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो, थोड़े समय के लिए ही सही।

हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जयकिशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है, और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है, और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा और उसका कोई अर्थ भी होता है, ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए, और ऐसा कुछ

0: जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उध कहाँ जाएंगे, उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं, तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया, सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत काम करना पड़ता था, तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था, तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुपकर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुपकर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है, जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माताजी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में तीन बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब विकट स्थिति इस विश्व की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी और आज वह संपन्न है पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती, और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ, कभी कोई भी हो सबकी मदद करनी चाहिए, बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं। मदद ज़रूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है, ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथ आश्रम में दे आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाए तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं कीरत करो, अर्थात कीर्तन सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, मंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ, और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती है पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ, मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ़ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर ज़रूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारी श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखाया है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ, यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है, और उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आँखें भी आँखों के बैंक में डोनेट कर दी हैं, आइज भी आइज बैंक में डोनेट कर दिए हैं। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आँखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? ज़रा इसका उत्तर आप दीजिएगा, और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है, गायक कलाकारों के नाम बताइए, और बताइए क्या बच्चों में कि जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।
1: उठ सबके

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से यह गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी। और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफ़र का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया है, अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहाँ काड़ वहाँ हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है। और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी, तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियाँ और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया, हवा, वाह। एक ने लिखा, इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुँह से वाह निकल जाती है। जी मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, बस सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीज़ें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटोस्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती हैं। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं, बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले, फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव वर्मन के संगीत के साथ। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए विधि प्रवीण जैन को, नमस्कार।

0: विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
4: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाई कोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @xaiarnews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
6: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
7: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
8: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा। पैचू बावरा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
4: मेरे वतन से

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धुबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है, ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें,
3: बिल्कुल
2: तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
3: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो। और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले,
2: बिल्कुल
3: है ना। और साथ ही 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है तो पूरे तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
2: अपने को पूरा ढक के निकलें जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं, जो सैलेड हैं, वो आप जरूर खाएं, और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिएं, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को बचा के रखना।
3: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं कुछ ना कुछ, तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में लें।
2: हाँ,
3: और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन, हल्का इस तरह का रेसिपी बना लें,
2: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
3: हल्का
2: वगैरह।
3: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
2: तरह, तो तरह आपके घर में
3: जी
2: तरह तरह के चावल,
3: तरह तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का,
2: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
3: हाँ बिल्कुल,
2: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
3: बिल्कुल, और आरती आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना। तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है ये
2: आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
3: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षण। अब जो घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए इसके सकारात्मक विचार भी
2: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
3: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
2: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है, क्या इसके है? और सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों संसार लेकर आए हैं,
3: तो साड़ियों के संसार आज कहां चलने वाले हैं।
2: आज हम साड़ी लेकर आए हैं, कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश में बहुत की है।
3: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
2: तो गीत सुन लेते हैं पहले।
3: चलो चलते हैं।

0: कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, बिल्कुल के भी,
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहां बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर अपने
0: बिल्कुल
1: तो इस वजह से तो हम आज लिख रहे हैं कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए,
1: गरिमामय लुक आए।
0: तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती है, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: बहुत बहुत सुंदर लगती हैं
0: जी।
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
0: जी,
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं
0: जी। अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती, विष्णु या महाभारत, रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियाँ कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
0: जी।
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा, जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृतियों की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है
1: जी। कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
0: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
1: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
0: क्या बात है। और कलमकारी डिज़ाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिज़ाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश

0: या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है
1: जी। और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है, फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं
0: जी। कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल देना है, और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आँच पर उल्टी तरफ से ही स्त्री इसे घरना है।
1: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियाँ वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियाँ पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती, मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती है कि नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल मन नहीं
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है। बिल्कुल, जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल, और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल, और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी। जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं, तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
0: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चल रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा हो रहा है।
1: ये शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे, वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है
0: और हम शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
1: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी, तनाव वाला भी, और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है वो भूलने लगते हैं हम चीजों
0: हाँ,
1: को।
0: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से। वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है। और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं ना, उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
1: ऐसे तो, गेम बना रहे हैं ना वो लोग
0: जी,
1: कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है। जैसे कि बच्चों में होता है
0: हाँ,
1: वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जा रहे हैं कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
0: तो और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हाँ। हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
1: और सबसे बड़ी बात है दीपक कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके के वर्चुअल दुनिया में रहने के।
0: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी, जब से आई नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, इससे सीखा उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल, डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने दवा खोज कर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है, बहुत
0: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद
1: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आरती, हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के

0: माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूँ कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती हैं फ़ायदा तो मुझे यही नज़र आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं। तो ठीक है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आँखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आँखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं। तो हर चीज़ का एक संतुलन उन्हें जरूरी है।
1: ये जो चीज़ें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं। अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आँखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीज़ों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है। इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फ़ोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फ़ायदेमंद है। बल्कि वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फ़ायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आँखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि अगर कि हम ये चीज़ कर पाते, काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है।
0: बिल्कुल सही कहा। और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी, बिल्कुल,
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं CCTV टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
1: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीज़ें हैं
0: जी।
1: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है। मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फ़ोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध भारती भी फोन भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

लगाते बनी मन चली छुप के छुपा के छुपी नजरें बचा के गुप चुप चली।

0: अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज़ है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जाने चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने के बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा।

0: और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव ना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है, ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है, ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए।

0: आरती देखो, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है।
1: खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं
1: आप? पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से 1/2 कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है, तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, 1/2 कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें 1/2 घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे 1/2 घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है, फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर 1/2 घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम हैं, काजू हैं जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं, और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए वो डाल लीजिए, फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं,
0: चलिए।
1: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं, चाहे तो बेलकर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे। हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर, ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रिन भी वाइट होता है। और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क। आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
0: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से। मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसा ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
0: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
1: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
0: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
1: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि

0: कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
1: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
0: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोले या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज ए चाइल्डहुड, कि जो लेडीज थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग, हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉल्वमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं, शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वो कोविड से शुरू किया है। फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो COVID-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे, इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन

0: वहाँ टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे. 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद. फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ. और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है. बलून रिलीज़ किया, सारे अब के वर्ड्स लिखे और पॉजिटिविटी गेट ऑफ इंडिया के से आ रही. ऑफ कोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था.
1: क्या बात है.
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा. उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए. तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा. और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया.
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं. उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो. तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है.
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे. यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं.
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है. जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है. इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता.
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं. 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है. नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं. तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना. आप इसे प्ले कर सकते हैं.

0: भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया, डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई, लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को ज़मीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया, वो स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है, तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए, तो फिर वही होता है ना डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वो स्टेबल लेटर ऑन। तो
0: लेकिन अगर कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं, बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि

0: आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए. ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, सडनली कोई कोलैप्स होता है. इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकेंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स. तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में. तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से. तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर सीपीआर किया. हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी सीपीआर किया. उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी एमओएस की मिनिस्टर थी. तो कई लोगों ने सीपीआर को एक्सेप्ट किया. और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में सीपीआर स्टेशन होता है
1: जी जी.
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है. उसको एक्सप्लेनेशन के लिए आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है. और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं. अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है.
1: बिल्कुल.
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को सीपीआर आनी चाहिए
1: जी.
0: तो वो एक अच्छा मकसद है. एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था. सीपीआर क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था
1: जी.
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजिली बोल पा रहे हैं कि सीपीआर करना है.
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है.
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है. और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम सीपीआर, मुझे तो आता था लेकिन मैं, डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं. तो उसको ये जेन्युइन डर था. तो मैंने बोला देखो, अगर आप सीपीआर नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं. हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है. अगर अभी आप सीपीआर कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ. जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप सीपीआर करो. एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो. और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा. एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला. अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा. तो हमें कोशिश करनी चाहिए. हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं. मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी. तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है. और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में सीपीआर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, और इजिली मॉड्यूल्स हैं. तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको.
1: बिल्कुल. तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे सीपीआर सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है. इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है. तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो. डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की.
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को सीपीआर आता ही आता है. वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर सीपीआर सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू.
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं.
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे. तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है। समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये एक तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है, और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी उसके बाद करूंगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था. तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी. मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
0: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो यू नो बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइम मिली, उसका फॉलो अप उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए, और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
0: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद, या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली. ये बेहद खतरनाक है.
1: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6-7 महीने किए और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है।

0: ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है. बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे. आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके. क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, एज अ जोकिंगली. बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
1: जी.
0: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए. तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफेक्ट हुए
1: जी.
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है.
1: बिल्कुल.
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है. उनको हर जुगाड़ आता है. इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी.
1: सेम दवा.
0: हाँ, सेम दवा. सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, हर घर की है. क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं. बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है. तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया. और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं. क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है.
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता. और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं.
0: तो मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे. जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे, लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है. जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता. एक डीप वैक्यूम, या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है. वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया. और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है. और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है. आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे. तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना. ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट.
1: सुनते हैं ये गाना.

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीज़ें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियाँ हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है। पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूट क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि कियोस में यूज करें। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं, और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर, बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं, वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
0: जी,
1: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए
0: जी।
1: तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज़ करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल भदरगे
2: और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।

0: से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

गीता संदेश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे साईं 6:20 से। आज अध्याय 4 के श्लोक 9-13 की व्याख्या की जाएगी। व्याख्याकार होंगे डॉक्टर रामचंद्र।

युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम आप सुनेंगे युववाणी। और आज अपने युवा साथियों के लिए हम लेकर आ रहे हैं युवा फरमाइश आपके पसंदीदा गीतों के साथ।

किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम अन्नदाता समय रहेगा साईं 6:30 से। हमारे ग्रामीण भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे साईं ठीक 7 बजे से।

हम किसी से कम नहीं। कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 8 बजे। आज दिव्यांग अनिल से बातचीत होगी दीपक प्रकाश की, प्रस्तुति अमरीक सिंह की। समय रहेगा सायं ठीक 8 बजे।

0: संगीत के आकर्षण इस प्रकार से रहेंगे।
1: सैनिकों के लिए समर्पित कार्यक्रम जय जवान समय रहेगा 7:30 से। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता लेकर हाजिर होंगे 7:45 पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत समय रहेगा 8:10 से। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें अपने श्रोताओं के लिए लेकर हाजिर होंगे रात्रि ठीक 10:00।

हिंदी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली की से साईं 6 बजे 8:45 पर रात्रि 11 बजे, अंग्रेजी में समाचार 6:05 पर रात्रि 9 बजे रात्रि 11:05 पर, प्रादेशिक समाचार 6:10 पर आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। साथियों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गाने नए पुराने लेकर हाजिर है आपका दोस्त संत कौशिक। दोस्तों, संगीत वो जादू है जो कभी पुराना नहीं होता। कुछ गीत हमें बचपन की गलियों में ले जाते हैं तो कुछ आज की धड़कनों के साथ कदम मिलाते हैं। तो अगले कुछ पलों तक हम करेंगे बात दिल की और सुनेंगे नए पुराने गीतों का खूबसूरत संगम। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे और रोमांटिक गीत के साथ।

दोस्तों, प्यार की असली खूबसूरती समय के साथ और बढ़ती है। इसी एहसास को बखूबी इस गीत में बयां किया गया है। सुनिए प्यार और वादों से सजा ये मधुर गीत।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में इंसान सिर्फ सुकून चाहता है। एक ऐसा ठिकाना जहां सिर्फ और सिर्फ अपनों का साथ हो।

सच में दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और अब थोड़ा मस्ती, थोड़ी यारी, क्योंकि जिंदगी मस्ती का भी नाम है।

दोस्तों, प्यार में सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब पहली बार किसी का दीदार हो और दिल बस उसी में खो जाए। तो दोस्तों, छलांग फिल्म के इस गीत के साथ आज का सफ़र यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है गाने नए पुराने का ये रंगीन और सुरीला कारवां आपको पसंद आया होगा। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त संत कौशिक को, फिर मुलाकात होगी नए गीतों, नई बातों, नए एहसासों के साथ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और संगीत के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। साय के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर है आपका दोस्त संत कौशिक। आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं आज युववाणी में युवा फरमाइश की बारी है। ये कार्यक्रम आपके सपनों का, आपकी सोच का, आपकी दोस्ती का, आपकी पसंद के गीतों का है, जहां बात होती है युवा जोश की, कॉलेज लाइफ की, दोस्ती, प्यार और जिंदगी के उन खूबसूरत पलों की जो हमेशा याद रह जाते हैं। तो तैयार हो जाइए युवा साथियों, अगले कुछ पलों तक बेहतरीन गीतों और शानदार फरमाइश के साथ जुड़ने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के फरमाइशी कार्यक्रम की, युवा फरमाइश की। और पहला गीत जो है आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं फिल्म फन्ने खां से, हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर। गांव सिलीकलां, जिला यमुनानगर, हरियाणा से जय सिंह काम्बोज, वैजयंत सिंह काम्बोज, रिदम निश्चय, जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरोड़ी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री, अंजलि बाला साहब, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, युवा सिर्फ उम्र का नाम नहीं, युवा वो सोच है जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला रखती है। हर दिन कुछ नया सीखिए, आगे बढ़िए, अपनी पहचान खुद बनाइए और इसी सकारात्मक सोच के साथ आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गीत सुन रहे हैं फिल्म छिछोरे से।

0: श्रोताओं, इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है जवाहर नगर दुर्ग से, आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता,

0: माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोतो, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी और आज हम लेकर हाजिर हैं युवा फरमाइश। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला गीत फिल्म बादशाह से। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश, गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार काम्बोज। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोतो संगीत के सफर को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर युवा फरमाइश का ये अगला गीत फिल्म अंधाधुन से, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार ने इस गीत को पसंद किया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

युवाणी में अगली फरमाइश हमें भेजी है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी वीपी रंजू अशोकपुरी सुशील बीकेपुरी कैलाश नीलम रमा पालीपुरी सुनील पाठक वीकेपुरी और विनोद। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं हिंदी मीडियम फिल्म से ये मदमस्त गीत। आइए आप सभी के साथ सुनते हैं ये गीत।

शुद्धो कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव और भानुप्रिया। आइए सुनते हैं गीत हम चार फिल्म से।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत युवा फरमाइश यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है आज के गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त संत कौशिक को, फिर मुलाकात हो गई नई फरमाइश, नए जोश, नए गीतों के साथ। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को उड़ान देते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। साय के 6 बजने को है समय हिंदी व अंग्रेजी में समाचारों का, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार 6:10 पर आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका

पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली डीईएमयू रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जींद वासियों ने इस रेल को जींद और सोनीपत के बीच चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पंचकूला में बिजली विभाग के कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को शहरों में 2 घंटे और गांवों में 4 घंटे के अंदर बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने धान की सीधी बिजाई पर बल दिया और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रधानमंत्री की अपील पर हिसार में छबीले लगाकर राहगीरों को पानी पिलाया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज को एफसीआई गोडाउन से डिफरेंट डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है उसमें जो डीलर्स का रिमुनरेशन लंबे टाइम से स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डिब्बों वाली डीईएमयू रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2,500 यात्रियों की है। यह

0: रेलवे द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन DEMU रेल को आधिकारिक मंजूरी दिए जाने का जींदवासियों ने स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। जींद नगर परिषद की अध्यक्ष डॉ अनुराधा सैनी ने कहा कि यह जींद के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया ईंधन की किल्लत और प्रदूषण की मार झेल रही है, ऐसे में यह शत प्रतिशत प्रदूषण मुक्त रेल देश को एक नई दिशा दिखाएगी।
1: सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जींद से सोनीपत तक हाइड्रोजन डेमो ट्रेन को चलवाने के लिए रेलवे ने जो आज मंजूरी दी है, ये बिल्कुल प्रदूषण फ्री है और इंडिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद को मिली है। ये जींद के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है।
0: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज पंचकुला के सेक्टर 20 में बिजली विभाग के कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में श्री विज ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली।
2: हमने उत्तरी में और दक्षिण में दोनों जगह अपने अपने कंप्लेंट सेंटर खोले हुए। 24 आवर ये वर्क करते, कोई भी 1912 पे डायल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। मैं चेक करने आया था कि दर्ज करने के बाद कितनी देर में लाइट ठीक हो। मैंने कुछ शिकायतकर्ताओं से 86 नंबर देखकर बात की है, कुछ सेटिस्फाइड है, कुछ नहीं है। ऐसा ही रोहतक सर्कल में पेंडेंसी बहुत ज्यादा, लगभग 2200 के करीब सुबह से कंप्लेंटें आ चुकी हैं। आधी ये ठीक कर चुके हैं, आधी ये भी पेंडिंग है। अगर हमें और लोग लगाने पड़ेंगे लगाएंगे, ताकि लोगों की कंप्लेंटें ठीक टाइम पे ठीक।
0: मोरनी क्षेत्र का उल्लेख करते हुए श्री विज ने बताया कि वहां पिछले दिन से बिजली आपूर्ति बाधित थी। इस संबंध में उन्होंने अधीक्षक अभियंता को मौके पर कर्मचारी भेजकर शीघ्र बिजली बहाल करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शहरी क्षेत्रों में बिजली संबंधी शिकायतों का समाधान अधिकतम दो घंटे के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 12 शिकायतों पर सुनवाई हुई। 4 शिकायतकर्ता बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि 7 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और 5 शिकायतों को लंबित रखा गया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने धान की सीधी बिजाई पर बल दिया।
3: तरह के हालात है उसमें सीधी बिजाई बेहतर रहेगी। किसानों से मेरा अनुरोध है वो सीधी बिजाई करें, उनको कई फायदे होंगे। एक तो पानी में ट्रैक्टर का जोर लगता है, तेल ज्यादा फूकता है। अगर सीधी बिजाई करेंगे तो कम तेल के अंदर अच्छी तरह से बिजाई हो जाएगी और 8-9 दिन पहले वो अनाज पकेगा, उसके अंदर पानी का खपत भी कम होगी और खाद भी कम लगेगा।
0: उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को सीधी बिजाई अपनाने के लिए सीधे उनके खाते में 4500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देती है। उन्होंने आम जन से सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान भी किया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन से अपील की है कि लू से बचाव के लिए अधिक से अधिक पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय पानी अपने साथ रखें। श्री मोदी ने अगर संभव हो तो राहगीरों को भी पानी पिलाने को कहा। प्रधानमंत्री की अपील पर हिसार शहर में आज अनेक जगहों पर छबील लगाकर लोगों को मीठा पानी पिलाया गया। हिसार से मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉ कुणाल नारंग ने बच्चों, बुजुर्गों, खुले में काम करने वाले किसानों और श्रमिकों को लू से बचने के लिए विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है।
4: हीट स्ट्रोक या फिर लू लग जाना, ये एक मुख्य बीमारी है जो इस समय गर्मी में बहुत पाई जाती है। इसका मुख्य इलाज प्रिवेंशन, सूती कपड़े पहने, वेंटिलेशन को मेंटेन करें, बहुत ज्यादा पानी पीते रहें। गर्मी में अगर काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोल पाउडर या पानी का सेवन निरंतर करते रहें। धीरे धीरे आधे आधे घंटे बाद रेस्ट लेकर शेड का यूज करते रहें, छाया में थोड़ी देर आराम करते रहें।
0: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने आज अपना पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने से पहले उन्होंने बोर्ड परिसर में

स्थापित माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री शंकरलाल धूपड़ ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाना होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में नकल और बाहरी हस्तक्षेप को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, साथ ही बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह, तेज और विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस पंप की कुल लागत का 30% केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार देती है। किसान को केवल अपनी तरफ से 25% राशि का भुगतान करना होता है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार 3 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर तक के सौर ऊर्जा पंप लगा सकते हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली DEMU रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर रामचंद्र की।
1: श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चतुर्थ अध्याय के श्लोक 9 से आगे की व्याख्या। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यह श्लोक पूर्व श्लोकों के ही अनुवर्तन के रूप में है और इस श्लोक में भगवान ने एक संदेश दिया है जो हमारी पूरी ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म के इस स्वरूप को अर्थात पुनर्जन्म के एवं अन्य सिद्धांतों के द्वारा ओतप्रोत जो मेरे जीवन का स्वरूप है उसको एवं मेरे जो कर्म हैं, मेरे जो व्यवहार हैं, मेरे जो आचरण हैं उसके स्वरूप को अर्थात मेरे जन्म एवं कर्म के दिव्यता को जो भी व्यक्ति जान लेता है वह पुनर्जन्म का ग्रहण नहीं करता अर्थात वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और वह मेरे पास ही चला आता है। यहाँ पर मूल रूप से यह श्लोक अर्जुन को संबोधित करते हुए दिया गया है, पर वास्तव में यह संदेश हम सब के लिए है कि एक ऐसी परंपरा जिसमें हम यह मानते हैं कि मृत्यु के बाद में अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म मिलता ही है, पर यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई युवा भी गीता के इस दिव्य संदेश को जानता है और श्री कृष्ण के जन्म एवं कर्म की जो दिव्यता है उसको पहचानता है तो वह पुनर्जन्म से हटकर मोक्ष का पात्र हो जाता है और इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण एक बड़ा संदेश दे रहे हैं और वह संदेश है वीत राग भय क्रोधा। यहाँ पर तीन शब्दों का उल्लेख किया गया है, राग, भय एवं क्रोध। भारतीय दर्शन में इन तीन के बारे में बहुत बड़ी विवेचना प्राप्त होती है। ये राग हमेशा सुख के साथ में जुड़ा हुआ है। योग दर्शन में कहा है सुखानुशयी राग, जहाँ जहाँ से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है वहाँ वहाँ से राग हो जाता है और राग स्वयं में एक क्लेश होता है। जो व्यक्ति राग से मुक्त हो जाता है और जिसके जीवन में भय भी नहीं होता, साथ साथ में क्रोध तो मूर्तिमान दोषों का सबसे बड़ा संकट का कारण है। अन्य अन्य जितने भी अपघात

हैं, उसके मूल में क्रोध मूल कारण होता है। तो भगवान कहते हैं कि वे व्यक्ति जिन्होंने राग से, भय से एवं क्रोध से स्वयं को मुक्त कर लिया है, मनमया जो मुझमें लीन हो गए हैं, अर्थात आध्यात्मिक साधना के द्वारा स्वयं को इतना निश्चल करना कि ईश्वरमय हो जाने की स्थिति को प्राप्त करना, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार की समाधियों का उल्लेख प्राप्त होता है। माम उपाश्रिताः, और जो मेरी शरण में आए हुए हैं, इस प्रकार के व्यक्ति जो ज्ञान एवं तपस्या से पूत हैं, जिन्होंने ज्ञान की साधना, आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञानाग्निना दग्धः सर्वे कर्माणः, सर्वाणि कर्माणि ज्ञान अग्नि द्वारा दग्ध हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान एवं तपस्या के द्वारा जितने भी कलमश हैं हमारे, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। मद भावम आगतः, और मेरे भाव में आए हुए व्यक्ति जो हैं वे मुझको प्राप्त होते हैं, अर्थात जब व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बनाने का उद्योग करता है तो अपने कार्य को उन्नति पाने का प्रयत्न तो सभी करते हैं, परंतु अपने जीवन के बाह्य दोषों को जब तक हम दूर नहीं करते तब तक हमारे जीवन में सफलता नहीं मिलती। पर यदि इसके साथ साथ में यदि हम स्वयं को इन सारे प्रकार के दोषों से मुक्त कर देते हैं और निरंतर स्वाध्याय के द्वारा अपने को पवित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं तो स्वयं ईश्वर ही आपको अपनी कृपा का पात्र बना लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यह श्लोक ईश्वर के उस विराट स्वरूप को प्रकट कर रहा है। सामान्य रूप से हम अपने स्वाभाविक व्यक्तित्व को छोड़कर एक आडंबर के साथ में ईश्वर की भक्ति करते हैं, या फिर समाज के अंदर अपनी उपस्थिति को इस प्रकार से प्रकट करते हैं जिस प्रकार से हम आंतरिक रूप से नहीं होते। इसके पीछे एक बड़ा कारण व्यक्ति यह भी समझता है कि जैसा मैं अंदर हूँ वैसा यदि बाहर प्रकट रहूँगा तो संभवतः समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा, परंतु भगवान कहते हैं कि मेरे द्वार पर इस प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जिस प्रकार के साथ में, जिस स्वरूप के साथ में मेरे पास आते हैं, उन्हें मैं उसी रूप में अपना लेता हूँ। श्लोक तो अर्जुन को माध्यम बना करके कहा गया है, पर वस्तुतः यह हम सब के लिए प्रेरक श्लोक है जिसमें भगवान ने प्रेरित किया है कि हमें अपने जीवन को निश्चल बनाना चाहिए, और जब हम निश्चल रह करके कार्य करते हैं तो हम ईश्वर की कृपा के सर्वाधिक पात्र बनते हैं। इस श्लोक के माध्यम से गीता के धर्म के विस्तार एवं उदारता की स्थिति प्रकट होती है। आपका प्रयत्न और आपका पुरुषार्थ जैसा है, मम वर्तमा अनुवर्तन्ते तान तथैव भजामि अहम्, उन्हें मैं उसी रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। यह एक ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है जिससे हम सबको आश्वस्त होना चाहिए कि यदि हम श्रेष्ठ बनेंगे तो ईश्वर की कृपा के पात्र अवश्य बनेंगे। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यह श्लोक भी कर्म की फल की इच्छा एवं उसकी सिद्धि को प्रकट करता है। भगवान कहते हैं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, जो व्यक्ति समाज में कर्म की सिद्धि की आकांक्षा करते हैं, यजन्त इह देवताः, वे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के देवताओं को आहुतियाँ प्रदान करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जिस किसी को भी सिद्धि चाहिए वे अलग अलग स्थानों पर अपनी आराधना की पूर्ति के लिए उपहार भेंट करते हैं, देवताओं के मंदिर तक पहुँचते हैं और बहुत सारे स्थानों पर पहुँचते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इस प्रकार से साधना करने वाले व्यक्ति को इस संसार में सिद्धिर्भवती कर्मजा, बहुत जल्दी उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। पर वस्तुतः आपका श्रेष्ठ कार्य आपको फल प्रदान करता है, यह इसमें संकेत किया गया है। जिस प्रकार के कर्म आप करते हैं उसी रूप में आपको फल की भी प्राप्ति होती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। यह श्लोक भारतीय समाज व्यवस्था का दर्शन प्रस्तुत करता है। इसमें भगवान कहते हैं कि मैंने गुण एवं कर्म के अनुसार चारों वर्णों की सृष्टि की है, तथा आपको यह जानना चाहिए कि मैं न कोई कर्म करता हूँ

0: न मुझ में कोई परिवर्तन होता है। भारतीय समाज व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों की व्यवस्था प्राप्त होती है, पर यह भगवान का समाज व्यवस्था का सम्यक प्रकार से निर्धारण करने वाला श्लोक है, जिसमें वह कहते हैं कि यह चार वर्ण जन्म के आधार पर नहीं होते, अपितु गुण एवं कर्म के आधार पर इनका विभाजन होता है। हम किस वर्ण के हैं यह बात लिंग या जन्म पर निर्भर नहीं होती, पर जिस प्रकार का कर्म हम कर रहे हैं उसी के आधार पर हमारा वर्ण निर्धारित होता है। आज के समय में यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस प्रकार से हम आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग के बीच में बहुत बार सामाजिक अंतर्विरोध की ध्वनि सुनते हैं। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि समाज के चारों वर्ण और उनमें रहने वाले सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतति है और उनमें आपस में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार आज श्लोक संख्या 9 से 13 तक की व्याख्या पूर्ण होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर रामचंद्र की। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6:30 होने को हैं। अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान अन्नदाता।

कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे धान के खेतों में सूत्रकृमि की समस्या और इनके समाधान पर। साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत कपास फसल की देखभाल पर और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में दर्शपर्णी अर्क दवा किस तरह बनावें और इसकी उपयोग विधि पर। साथ ही जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा और करवाऊंगे भाइयों का मनोरंजन भी। तो शुरुआत करें भाइयों की चर्चा से धान के खेतों में सूत्रकृमि की समस्या और इसके समाधान पर। किसान भाइयों, पौधों में सूत्रकृमि यानी कि सांप वर्गे बिल्कुल छोटे छोटे जीव जिनकी लंबाई इतनी कम हो है कि जिन हम अपनी नंगी आंखा तक देख भी नहीं सकते, और लंबाई की बात करें तो भाइयों 0.2 मिलीमीटर तक 11 मिलीमीटर तक इनकी लंबाई हुआ है। और आमतौर पर इनके जो शरीर की बनावट है वो तकिए के आकार की हुआ है, यानी कि जो सिरे हैं वह तो पतले और बीच में तो हैं मोटे। और फसलों में भाइयों सूत्रकृमि जो है ज़्यादातर जमीन में रहकर पौधे की जड़ पर ही आक्रमण कर रहे हैं, और अलग अलग तरह के सूत्रकृमि अलग अलग फसलों में नुकसान पहुँचा हुए हैं जो कि इनकी संख्या पर भी निर्भर कर रहे हैं। और बहुत छोटे होने के कारण जो है जमीन के अंदर हुए हैं तो इनके लक्षण भी जो है प्रकट नहीं होते, यानी कि किसान भाइयों ने जो है इनके लक्षण दिखाई भी नहीं देते। और अलग अलग तरह की फसलों में ये लाखों रुपए तक का किसान भाइयों ने नुकसान पहुँचाता है। और सीधे तौर पर जो नुकसान है वो तो है वो है, साथ में जो है जो फसल है उसमें अंदर अंदर ही नुकसान जो पहुँचाव है जिसकी किसान भाइयों ने कल्पना भी नहीं होती, इस तरह का नुकसान जो है फसल में पहुँचाता है। और सूत्रकृमि में भाइयों जो प्रभावित पौधे वजह हैं उनमें जो दूसरे रोगाणु जिस तरह फफूंद हो गया जीवाणु हैं विषाणु हैं वो भी अधिक मात्रा में और आसानीतः आक्रमण कर सके। और सूत्रकृमियों द्वारा पैदा जो लक्षण है भाइयों ज़्यादातर तत्वों की कमी तो उत्पन्न लक्षणों से मिलते जुलते हुए हैं और जिसकी आसानीतः किसान भाई पहचान भी नहीं कर पाते। और आमतौर पर जो किसान भाई है वो सूत्रकृमि की समस्या

को जो कीट है या बीमारी समझ कर अंधाधुंध जो है कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक का प्रयोग करना शुरू करते हैं। और धान की फसल में भाइयों नुकसान पहुंचाने वाले जो सूत्रकृमि हैं उनके लक्षण, उन तोड़ने वाले जो नुकसान हैं या इनका नियंत्रण हम किस तरह करें, इसके बारे में किसान भाई ने जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बात करें भाइयों धान का जड़ सूत्रकृमि। ज्यादातर जितने भी अनुसंधान हुए हैं उनमें ज्यादातर पता लग गया कि जो राज्य में धान उगाने वाले जो सभी क्षेत्र हैं उसमें धान की जड़ में सूत्रकृमि की समस्या ज्यादातर बढ़ दी जाने लग रही है। और यह एक घूमन फिरन वाला परजीवी सूक्ष्म कृमि है, सूत्रकृमि है, जो जड़ के अंदर प्रवेश कर जाए और वहीं पर अपना पूरा जीवन चक्कर निकालता है। और खास तौर पर भाइयों जो सेम वाले क्षेत्र हैं उनमें समस्या ज्यादा देखी जावे है। और इसकी सभी अवस्था जो है वो संक्रमणकारी है। साथ ही भाइयों जो सूत्रकृमि है जड़ों के अंदर ही खाना शुरू कर दे हैं और प्रोड बन जाए। और फसल कटने के बाद भाइयों जो सूत्रकृमि है ये धान की जो ठूठ है उसमें रह कर जो दूसरे पर पोषी पौधे हैं उन पर जीवित रहे हैं, जिस तरह प्रभावित पौधे पीड़े और छोटे रह जाए। साथ ही फुटाव भी कम कर रहे हैं और जो प्रभावित जड़ हैं भाई वो भूरे रंग के धब्बे बना हुए हैं और जड़ जो है वो छोटी और गेरवे रंग की हो जाए। और ऐसे पौधों में भाइयों बाड़ियाँ एक हफ्ते देर निकला है और देर तय ही वह पके हैं। तो इसकी रोकथाम हमने किस तरह करनी है, अगर धान का जो है जड़ सूत्रकृमि है तो उसकी समस्या का समाधान करने खातर भाइयों हमने पौधशाला में 3-4 ग्राम फ्यूराडान 3G प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पौधे की बिजाई के समय डालना है। और अगर किसान भाई ने लक्षण दिखें तो खेत में नजर आवे तो भाइयों पौधे लगाने के 40-50 दिन के बाद यह दवा इसी हिसाब से खेत में दोबारा डाल दें। और धान के जो ठूठ है भाइयों उनने कटाई के बाद जला दें या फिर मिट्टी में दबा दें ताकि सूत्रकृमि की जो अवस्थाएं हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाए और जो हम अगली फसल ले हुए तो उस तक ही सूत्रकृमि ना पहुंच पावे। जो दूसरी समस्या भाइयों धान की फसल में वह है धान का जड़ गांठ सूत्रकृमि, जो उसका नाम ही बताओ भाइयों की यानी कि जो पौधे है उसकी जड़ में आखिरी छोर पर गांठ बनाकर वह है। और यह सूत्रकृमि भाइयों धान और जो ग्रामीणी कुल की जितनी भी फसल है उनमें खरपतवारों की गांठ बना हुआ है और इस द्वारा जो बनाई गई गांठ है वो हुक जिसी दिखाई दे हुए हैं। और ये सूत्रकृमि भाइयों सब्जी वाली जो फसल है उन पर नहीं पनक सकते और इन सूत्रकृमियों तो प्रभावी जो धान की फसल है वो छोटी और बहुत कमजोर रह जाए, जिसमें फुटाव भी कम हो है और जो प्रभावित पौधे हैं उन पर बाड़ियाँ बहुत कम और छोटी नजर आव हैं, जिस तक पैदावार में 10-30% तक की कमी आ जाए। और किसान भाई जो है धान की फसल में रोग त अधिक जो प्रभावित होने वाले खेत हैं उसमें अगर ये लक्षण दिखाई दे तो मिट्टी का नमूना लेकर उसकी जांच जरूर करवाऊं भाइयों, ताकि समय रहते किसान भाई ने पता लग जाए कि जो मिट्टी है उसमें जड़ गांठ सूत्रकृमि है या नहीं है। और रोकथाम के उपाय की बात करें तो भाइयों गर्मी के मौसम में खासतौर पर जो अभी चल रहा है अप्रैल मई जून का महीना, इसमें खेत में 3-4 बार 10-15 दिन के अंतराल पर गहरी जुताई जरूर करें। पौधशाला में बिजाई तय 15-20 दिन पहला सफ़ेद पॉलिथीन जो कि लगभग 25 μm आकार की हो उससे ढक दें और अपोषक फसल चक्कर अपनावें। साथ ही भाइयों खेत को जो है खरपतवार मुक्त रखें और सूत्रकृमि तो प्रभावित खेत में धान और अनाज वाली फसल ना बोएं। साथ ही भाइयों सूत्रकृमि तो जो प्रभावित पनीरी है उसमें फ्यूराडान 3G ताकत की दवाई ने 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर तक डालने तो जो धान की जड़ गांठ या जो सूत्रकृमि समस्या है इस पर समाधान पाया जा सकेगा। तो ये तो करीब भाइयों चर्चा धान के खेतों में सूत्रकृमि की समस्या और उसके समाधान पर। और इब ले भाइयों जानकारी मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेल्सियस। तो भाइयों जो तापमान आज 43 डिग्री सेल्सियस रहा यानी कि गर्मी जो है वो अपने चरम पर है और इस गर्मी के मौसम में जब लू चालन लग रही है तो ऐसे में भाइयों हमने अपना भी ध्यान रखना है, अपने पशुधन का भी ध्यान रखना है, साथ में कोशिश करनी है कि जो सुबह 10 बजे या 9-10 बजे का समय है उससे लेकर 4 बजे तक का जो समय है उसमें हम कम से कम बाहर निकलें। मजबूरी है बाहर निकलना है तो परना है या कोई कपड़ा है उस सर पर जरूर ढक कर निकलें, साथ में पीने का

0: और कोशिश करें कि भाई वो जितने दिन में जितना भी ज़्यादा उसका है उतना तरल लेवें, पानी जितना पीस के उतना पानी पीवें, और पानी के साथ साथ जो दूसरी तरल चीज़ है, चाहे वो नारियल पानी है, लस्सी है, दही है, या फिर नींबू पानी है, किसी भी तरह का जो है हमने तरल जरूर लेना है, और साथ में जो है हल्का खाना खाना है, और ध्यान रखना है कि जब भी हम बाहर निकलें तो पूरे शरीर ने ढककर बाहर निकलें ताकि गर्मी तय लू तय बचाव करा जा सके। साथ ही जो हमारे पक्षी हैं या जो खुले में जो आवारा जानवर हैं, कुत्ते हैं या गाय हैं जो घूम रहे हैं, उन खातर भी हमने पानी की व्यवस्था करनी है, उनके भी दाने पानी का हमने इंतजाम करना है ताकि वो भी जो है सुरक्षित रहें इस गर्मी के मौसम में। और भाइयों इवले में जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की, तो कल है भाइयों दिन वीरवार, और वीरवार में किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे खेती में AI तकनीक का उपयोग और उसके महत्व पर, और साथ ही भाइयों आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे प्राकृतिक विधि तक खेतों में फसल उत्पादन किस तरह बढ़ावें, और जानकारी लेंगे कृत्रिम भोजन का मधुमक्खियों के लिए महत्व पर।
1: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
2: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
1: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
2: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
1: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
2: 9813173102।
1: कंपोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
3: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। COVID-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी।
0: और इब करवाओ भाइयों का मनोरंजन, सुने एक रागनी।

प्यार जीवेगा तेरे मरे की सुन के जहर भरा तेरी काया में लक्कड़ होगी।

0: ये तो सुनी भजन रागणी और गायक कलाकार थे करमपाल।
1: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
2: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
1: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
2: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
1: खर्चा कम उत्पादन ज्यादा ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
2: 9813173102।
1: कंपोज एक्सपोर्ट्स भरोसे का प्रतीक।
3: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
0: और किसान भाइयों, एक करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत कपास फसल की देखभाल पर। भाइयों, जो पत्ते और जड़ पर लगने वाले मुख्य रोग हैं वो कपास की फसल में ज़्यादातर देखे जाते हैं, और पत्तों पर लगने वाले जो रोग है उसमें पत्ता मरोड़ रोग जो है वो सबसे मुख्य रोग है। इसके बाद भाइयों, कोणदार धब्बों का जीवाणु रोग भी बहुत महत्वपूर्ण रोग है, और जड़ में लगने वाले जो रोग हैं उसमें जड़ गलन और झुलसा रोग मुख्य रूप से है। इसके अलावा टिंडा गलन, जो कि फफूंद जीवाणु और कीड़ों के द्वारा फैला है, और ख़ास तौर पर ज़्यादा बरसात में ये एक समस्या के रूप में सामने आया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इन सब रोगों की पहचान करें, और सही समय पर अगर हम पहचान कर पाए तो हम इनकी रोकथाम भी कर पाएंगे। तो पत्तों में जो मुख्य रोग और उनकी हमने रोकथाम किस तरह करनी है, तो जो पत्तों के मुख्य रोग है वो है पैराविल्ट। ये आज के समय में कपास का सबसे मुख्य रोग है भाई, और ख़ास तौर पे ये अगस्त अक्टूबर के महीने में ज़्यादा देखा जा रहा है। और इसका मुख्य कारण है भाइयों, लंबे समय तक सूखा रहने के बाद एकदम तय बारिश हो जाना, या हम खेत में सिंचाई कर दें तो ये समस्या देखी जा रहा है। और रेतीली जमीन में इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जा रहा है, और इस समस्या के कारण भाइयों पौधों के पत्ते जो हैं अचानक मुरझा जाए हैं, और पौधे बहुत जल्दी सूखना शुरू करते हैं, जिसके कारण भाइयों पौधा असमय जो है उसकी मौत हो जाए। और इसमें कोई जो रोगाणु है वो शामिल नहीं होता। इस समस्या के लक्षण दिखाई देने पर भाइयों 48 घंटे के अंदर कोबाल्ट क्लोराइड 2 ग्राम हमने 200 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। इसके अलावा भाइयों, जीवाणु अंगमारी या कोणदार धब्बे का रोग, ये रोग भी भाइयों कपास की फसल का एक मुख्य रोग है। और इस रोग में भाइयों पौधे के सभी भागों पर इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और इसके जो मुख्य लक्षण है भाइयों वो है टहनी पर धब्बे, पत्तियां पर कोणदार धब्बे और टिंडों पर भी धब्बे दिखाई देना। और इस रोग के लक्षण भाइयों पत्तों पर कोणदार जो पानीदार धब्बे हैं उसके रूप में दिखाई देंगे, और ये गहरे भूरे रंग के होकर किनारे पर लाल या फिर जामुनी रंग के हो जाए, और कदे कदे तो भाइयों आपस में मिल भी जाए, और तने पर लंबे या अंडाकार काले रंग के धब्बे बन जाए। और प्रकोप की अवस्था में भाइयों कोणदार जो धब्बे हैं वह शिराओं के आसपास सिमट जाए, और इस तरह भाई शिराएं जो है वो काली पड़ जाए, जिसकी वजह से पत्ता सिकुड़ना शुरू हो जाए और पीला परक यह गिर जाए है। इसके साथ भाइयों एक समस्या और है, वो है पत्ता मरोड़ रोग। यो कपास का एक मुख्य रोग है, और सबसे पहला भाइयों ऊपर की जो कोमल पत्ती है उन पर इसका असर दिखाई देना शुरू हुआ है। उसके बाद पत्तियां भाइयों ऊपर की तरफ मुड़कर जो चाय पीने वाला कप है उस जैसी आकृति में आ जाए, और कहीं कहीं पर तो भाइयों पत्तियों की जो निचली सतह है या जो निचली तरफ वाला हिस्सा है उसमें नसों पर भी पत्ती के आकार की जो बढ़वार है वो दिखाई देनी शुरू हो जाए, और ऐसे भाइयों पौधे छोटे रह जाए। इन पर फूल कली और जो टिंडे हैं वो नहीं लगते, और इनकी पैदावार जो है एकदम तय रुक जाए। और इसकी उपज जो हम कपास की उपज ले रहे हैं उस पर भी इसका बहुत बुरा असर देखने मिला है। यो रोग भाइयों एक जैमिनी विषाणु द्वारा फैला है, और सफ़ेद मक्खी इस रोग ने फैलाने में मदद करे। तो बीज है, जमीन है या जो छुआछूत है, इसके कारण यो रोग नहीं फैलता। यो रोग वायु पौधों की किसी भी अवस्था में और किसी भी समय आ सके है। और जब यो रोग आ जाए फसल में तो 80-90% तक जो फसल है उसने ये नुकसान पहुंचाते हैं। और यदि रोग फसल की शुरुआती अवस्था में आ जाए तो ज़्यादा नुकसान देखने मिलेगा, और फसल की अगर पछेती अवस्था में आ जाए तो पैदावार पर लगभग कोई असर इसमें नहीं पड़ता। और ये रोग भाइयों अधिक हो वहाँ पर कोशिश करें कि देसी कपास की बुआई करें, क्योंकि देसी कपास में भाइयों यह समस्या नहीं आती। और सफ़ेद मक्खी का पूरी तरह से नियंत्रण अगर हम करें तो इस समस्या से बचाव कर सके हैं। कई तरह के खरपतवार भी इस रोग ने फैलाने में मदद करे हैं, इसलिए भाइयों खेत ने, उसके आसपास की जो जगह है, पानी की नाली है, उन्हें बिल्कुल साफ रखें ताकि ये रोग ना फैले। और भिंडी पर भी ये रोग पाया जावे है, इसलिए जहाँ पर ये रोग लगे तो वहाँ पर भिंडी की काश्त ना करें। और इस रोग की रोकथाम खातर भाइयों कोई फफूंदी नाशक इसमें काम नहीं करता। इसके बचाव खातर हमने बस कुछ एक सावधानी रखनी है। एक तो फसल की अगेती बिजाई ना करें, रोग रोधी किस्म का प्रयोग करें, सफ़ेद मक्खी ने नियंत्रित करने की कोशिश करें, और खेत के आसपास भाइयों खरपतवार ने ना पनपन देवें। इसके अलावा भाइयों एक समस्या और है जो कपास की फसल में देखी जावे है, वो है पत्ता छेदक धब्बा रोग। और भाइयों यो रोग जो है वो माइरोथीसियम रोडीडम नामक जो फफूंदी है उसके कारण फैले है। और इस रोग के जो मुख्य लक्षण है वो रोगी पत्ते पर लाल बैंगनी झलक लिए जो है हल्के भूरे रंग की सफ़ेद हल्के भूरे रंग की जो फफूंद है उसकी बिंदी के रूप में और धब्बे के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाए। और शुरुआत में भाइयों इन धब्बों का आकार पिन के सिर जैसा दिखाई देवे है, और बाद में जब प्रकोप बढ़ा है तो ये धब्बे आपस में मिलना शुरू करते हैं, और रोगग्रस्त जो पत्ता है भाग है उसमें पत्ते फिर गिरना शुरू हो जाए और पत्तों में भाइयों छेद दिखने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह लक्षण दिखे तो हमने जो तुरंत है इसका समाधान करना है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज यह बीमारी भाइयों पौधे के हर भाग पर पौधे की किसी भी अवस्था में देखी जा सके है। शिशु पौधे पर लाल लाल धब्बे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और सारे तने हैं उस पर आराम आराम तक छा जाएंगे, जिस तरह पौधा मर जाए। और जल जो सिकत है यानी कि जो पानीदार धब्बे हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे और अंदर धसे हुए धब्बे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिसके किनारे लाल रंग के होंगे और बाद में नारंगी रंग का फफूंद जो है बीजाणु इन पर छा जाएगा। और रोगग्रस्त जो टिंडे हैं उन पर भी धब्बे अंदर तक फैल जाए हैं, और डोडियों पर जो है गुलाबी पिंड हमने दिखाई देने इसमें शुरू हो जाएंगे। एक और समस्या है वो है दहिया रोग। यो रोग भाइयों देसी कपास में लग गया है। जब फसल लगभग पककर तैयार हो जाए और ज़्यादातर कपास पहले ही चुन ली जाए तो मिल्डू के धब्बे पुराने पत्तों की निचली सतह पर छोटे एनेमित और सफ़ेद कोनेदार दिखाई देने शुरू होंगे। रोगग्रस्त पत्ते जल्दी गिर कर फसल जो है वो ख़त्म होने शुरू हो जाए। तो कपास की जब हमने सारी बीमारी की बात करी है तो इसका उपचार किस तरह करें? तो पौधों को भाइयों भूमि के उत्पन्न वाले जो फफूंद है उनमें बीज के रहने वाले जो बीजाणु हैं उन तक बचाव करना है, और उसके लिए भाइयों हमने फफूंद नाशक दवाइयों का सही उपयोग करना है। साथ ही बिजाई के 6 हफ्ते के बाद या फिर जून के अंतिम या जुलाई के पहले हफ्ते में हमने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6-8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 600-800 ग्राम एक एकड़ के हिसाब से 150-200 लीटर पानी में घोल कर बनाकर इसका 15-20 दिन के अंतराल पर इसका हमने 3-4 बार छिड़काव करना है। ये तो भाइयों करी चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत कपास फसल की देखभाल पर। इब ले भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में दर्श परणी अर्क दवा किस तरह बनावे और इसके उपयोग पर। भाइयों दर्श परणी अर्क दवा यह दवा भाइयों सभी तरह की जो रस चूसक कीट हैं और सभी तरह की जो इल्ली हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बर्तन में भाइयों 100 लीटर पानी भर लें, उसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र डाल लें और 1 किलो उसमें देसी गाय का गोबर डालकर उन्हें लकड़ी की मदद से अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद भाइयों कुटी हुई 2.5 किलो नीम के पत्ते, उसमें साथ के साथ जो छोटी और जो कोमल डाली है नीम की वह भी डाल सकें। 1 किलो शरीफा के पत्ते, 1 किलो करंज के पत्ते, 1 किलो अरंडी के पत्ते, 1 किलो इसमें भाइयों धतूरा के पत्ते, 1 किलो बेल और आम के पत्ते, 1 किलो पुटुस के पत्ते, 1 किलो बेल के पत्ते, 1 किलो इसमें हमने पपीते के पत्ते डालने हैं, 1 किलो इसमें बबूल के पत्ते डालने हैं, 1 किलो अमरूद के पत्ते, 1 किलो जवा फूल के पत्ते, 1 किलो इसमें भाइयों आकंद के पत्ते, 1 किलो अमरी के पत्ते, 1 किलो गेंदा फूल के पत्ते हमने इसमें मिलाने हैं, और नीम सहित भाइयों कम से कम 10 इसमें हमने यानी कि जो ये औषधीय वनस्पति हैं इनके पत्ते डालने हैं। और इसके साथ भाइयों कूटा हुआ 500 ग्राम हमने तंबाकू का पत्ता, 250 ग्राम तीखी हरी मिर्च की पेस्ट और 250 ग्राम भाइयों इसमें देसी लहसुन की पेस्ट और 100 ग्राम हमने सौंठ पाउडर और 250 ग्राम इसमें हल्दी पाउडर हमने डाल के मिला लेना है। दिन में 2 बार सुबह और शाम इसमें हमने लकड़ी के डंडे के साथ जो है घोल चलाना है और बारिश और धूप तो बचा कर रखना है। 40 दिन के बाद इसने कपड़े जो मखमल का कपड़ा है उससे छान लें और मिट्टी के मटके में इसने दवा ने इसने इकट्ठी कर लें और इस दवा का स्प्रे भाइयों 30 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल बनाकर किसी भी रस चूसक या जो सभी तरह की जो इल्ली हैं उन पर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं और सभी तरह के जो रस चूसक कीट हैं या जो इल्ली हैं उन हम नियंत्रित कर सकते हैं। यह दवा भाइयों 6 महीने तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार बनाकर। तो जो दश परणी अर्क दवा है यह एक देसी दवा है और एक प्राकृतिक दवा है जिस तरह हम रस चूसक कीट और जो इल्ली हैं उन हम नियंत्रित कर सके हैं। यानी कि जो रासायनिक दवाई हैं उनका इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम प्रकृति की तरफ बढ़ेंगे और प्राकृतिक तरीके अपनाओगे तो हमारी जो मिट्टी है, जो पानी है और जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ भाइयों जो हमारी भोजन की थाली है उसमें वो जहर नहीं आएगा। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम अन्नदाता 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब होगा भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सारे बाण भाइयों ने एक बार फिर विनोद भाई की मीठी मीठी राम राम। भाइयों आज ग्राम संसार कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आधुनिक जीवन शैली में संयुक्त परिवार की भूमिका और उसके महत्व पर। भाइयों हम सब जाने हैं कि आजकल जो जिंदगी है वो बहुत तेजी तक भाग रही है, साथ ही साथ जो नई नई तकनीक आ गई हैं, इंसान इतना व्यस्त हो गया है इन सब कामों में, उसकी वजह से जो है जो संयुक्त परिवार हैं वो टूटते जान लग रहे हैं और जो एकाकी परिवार हैं अकेले परिवार हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लग रही है। चाहे गांव तक जो बच्चे हैं उन्हें शहरों की तरफ जाना है या विदेश की तरफ जो रुझान है उस तरफ जान लग रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार टूटने लग रहे हैं। और ऐसे में जो एकाकी परिवार हैं उसमें बच्चों का देखभाल करने वाला, पीछे तो जब माँ बाप काम पर चले जाओ तो उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता, या कह लगे जो कोई सुरक्षित आत्मी है जो उन बच्चों ने संभाल सके उनमें संस्कार भर सके, तो ऐसे में संयुक्त परिवार का महत्व बहुत बड़ा है। साथ ही साथ जो सामाजिक ताना बाना है वो भी संयुक्त परिवार से ही जुड़े हुए हैं। तो इस आधुनिक जीवन शैली में संयुक्त परिवार का महत्व भावात्मक सुरक्षा और बच्चों के बेहतर अगर लालन पालन की बात करें और आर्थिक सहयोग के रूप में भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भाग दौड़ भरी जिंदगी और तनाव के इस दौर में या जो प्रणाली है जो एकाकीपन है उसने दूरकरण का और मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारा ताना बाना है उसने बनाए रखने में भी जो संयुक्त परिवार है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। खासतौर पर अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे में जो संस्कार है, बच्चे में जो मूल्य है वो उनके दादा दादी, बड़े बुजुर्ग हैं, नाना नानी हैं, उनके सानिध्य में बच्चे ने ये नैतिक मूल्य या धैर्य है, परिवार की परंपरा है, इन सब का ज्ञान मिला है। क्योंकि जब माता पिता अपने काम खातर बाहर निकल जाए हैं तो जो बच्चे हैं घर में वो दादा दादी के पास ही रहे हैं या जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास रहे हैं, और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चा का बड़े अच्छे से ध्यान भी रखे हैं, चाहे उनका खाना पानी है या फिर बच्चे का लालन पोषण है, उनमें संस्कार डालना है, ये सब काम जो है वो घर के बूढ़े बुजुर्ग जो है आसानी तक कर रहे हैं। और जो माँ बाप घर तक बाहर गए हैं काम पर तो वह भी बड़े निश्चित रहे हैं कि जो घर पर बड़े बुजुर्ग हैं हमारे बच्चे उनके पास सुरक्षित हैं। इसके अलावा भाइयों जो कामकाजी माता पिता हैं उन खातर अपने बच्चों को घर पर सुरक्षित और भरोसेमंद हाथ में छोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो संयुक्त परिवार में बच्चों की देखभाल आसानी तो हो जाए और वह कभी अकेलापन भी महसूस नहीं करते। और आजकल देखा भी जा रहा है जो एकाकी परिवार है उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो माता पिता है वो अपने काम के लिए निकल गए तो बच्चा जो है वो घर पर अकेला है और अकेले के अपन के कारण उसमें तनाव या फिर जो है चिंता और दूसरी जो अवसाद है मानसिक वो उसमें आ जाए, जिसकी वजह से कई बार बच्चा जो है गलत कदम उठा ले है या वो जैसे आजकल देखा भी जाओ है कि वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा ले है, क्योंकि वो बच्चा जो है डिप्रेशन में आ गया है, मानसिक रूप तो वो स्वस्थ नहीं रहा क्योंकि वो अकेलेपन के कारण उसके साथ ऐसा होया। तो ऐसे में जो है अगर परिवार संयुक्त होगा तो घर में दो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ मिलना जुलना बोलना हंसना ये सारे काम चलते रहेंगे जिसकी वजह से परिवार जो है मजबूत बने हैं। साथ ही अगर देखा जाए अगर परिवार संयुक्त होगा तो खर्चा में भी कमी आवे है, क्योंकि सामूहिक रूप से जब हम घर में रहे हैं तो आर्थिक बोझ भी बट जाए। घर में जितने ज़्यादा काम करने वाले सदस्य होंगे तो कमाई उतनी ज़्यादा भी होगी और साथ में वो जो खर्चे हैं वो आपस में बंट जाएंगे, जिस तरह बिजली होगी, राशन आदि लेकर आना है और कोई सामान घर में आना है तो वो सारे जो सामान हमने लेकर आने हैं या बिल देने हैं हमने वो सारे आपस में बंट जाएं, जिस तरह आर्थिक बोझ भी कम हो जाए। साथ ही जो संयुक्त परिवार है उसमें जो काम करने वाले सदस्य हैं उनके बीच में काम भी बंट जाए, खाना बनाना है, सफाई करनी है, खरीदारी करनी है, बाहर जाना है, किसी रिश्तेदारी में जाना है, तो कहीं भी कुछ भी काम करना है वो सारे काम आपस में बंट जाए और सारे काम बड़ी सुगमता तो हो जाए, आसानी तो हो जाए और एक अकेले इंसान पर उसका सारा बोझ नहीं आता, जिसकी वजह से उसमें तनाव भी आवा है। तो एकाकी परिवार में ये सब तो बड़ी समस्या है कि एक ही इंसान के ऊपर सारा बोझ आ जाए, चाहे वो घर के खर्चे चलाने हैं या फिर घर और परिवार के जो सारे काम हैं उनका बोझ भी एक इंसान पर आ जाए, तो इस तरह भाई जो शर्म है वो भी बंट जाए। साथ ही तनाव तो मुक्ति भाइयों, क्योंकि आजकल का जो जीवन शैली है उसमें प्रतिस्पर्धा और भाग दौड़ इतनी ज़्यादा है कि घर पर लौटने के बाद जो है आदमी अगर संयुक्त परिवार होगा तो उसमें बड़ी मानसिक शांति मिलेगी,
क्योंकि घर में इतने लोग हैं कि जो उसका ढांढस बंधा हुआ है उसने मजबूती दे हुए हैं, और वो अगले दिन खातर फिर तैयार होकर काम पर निकल जाए हैं। साथ ही जब घर में सदस्य बहुत हों, आपस में सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं, आज दिन में क्यों या सारी बात कर रहे हैं आपस में, तो उससे मन हल्का हो जाए है और आपसी जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत हों। और साथ ही भाइयों, जो परिवार संयुक्त हो ना, तो कोई एकदम तक वित्तीय संकट आ जाए, मान लो घर में किसी की नौकरी चली गई है या फसल अच्छी नहीं हुई है, तो एक इंसान के ऊपर वजन नहीं आंदा, दो दूसरे घर के सदस्य हैं जो कमा रहे हैं वो उसकी उसके बोझ है, उसके जो आर्थिक बोझ है उसने उठा ला है, और आपस में जो है एक दूसरे के काम चल जाए है। इसी तरह भाइयों, जब घर में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाए है, तो उसमें अगर परिवार एकाकी होगा तो एक जो अकेला कमाने वाला है उसके साथ समस्या यह आ जाएगी कि अगर घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है, बीमार है, या वो अस्पताल में एडमिट हो गया, तो उसकी देखभाल भी करनी है और साथ में उसने अपना काम भी देखना है, तो दोनों तरह की समस्या आ जाए। तो जो अगर परिवार संयुक्त होगा तो संयुक्त परिवार में इस तरह की समस्या नहीं आती। घर में सदस्य हैं तो कोई ना कोई सदस्य जो है एक अस्वस्थ जो घर में सदस्य है उसकी देखभाल कर ले, बाकी जो अपने काम धंधे पर भी चले जाए। साथ ही घर में जब कोई बुरा समय आवा है तो उसमें भी जो है घर के जब सारे सदस्य इकट्ठे हुए हैं तो एकजुटता बनी रहा है और मजबूती तो वह हर चीज़ ने संभाल रहे हैं। इसके अलावा भाइयों, जो संयुक्त परिवार है उसमें हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी अच्छी तरह से देखभाल हो जाए, जो दादा दादी हैं या घर के जो बड़े सदस्य हैं, घर के छोटे हैं या घर के जो दूसरे सदस्य हैं वो उनकी बड़ी अच्छी आसानी से देखभाल कर रहे हैं। और यही समस्या है भाइयों एकाकी परिवार में, जब एकाकी परिवार में घर के सदस्य कमान खातर बाहर निकल जाए तो घर के बुजुर्ग घर में अकेले रह जाए, और वो जो अकेला घर है उन्हें काटने दौड़ा है, क्योंकि उस घर में कोई उनकी बात करनी नहीं, उन्हें कोई कुछ सामान अगर उन्हें जरूरत है खान पीन की वो कोई देनिया नहीं उनने, तो इस तरह जो है संयुक्त परिवार में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका अकेलापन भी दूर हो जाए और साथ ही जो है वो घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनसे जुड़े रह जाए और उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका भी हम नियंत्रण कर पाए। तो ये तो भाइयों करी चर्चा आधुनिक जीवन शैली में संयुक्त परिवार की भूमिका और उसके महत्व पर, और इब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन सुने रागणी।

0: ये तो सुनी भजन रागणी और गायक कलाकार थे रणबीर सिंह और साथी।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और ऊर्जा, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जैसे कोयला, तेल और गैस। सबसे ज्यादा प्रभाव कोयला डालता है और गैस व तेल भी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं। हालांकि अब विकासशील देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है। सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, कई देश 2030 तक

0: जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से अधिक है।
1: और भाइयों, इवलेवन जानकारी, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। भाइयों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद के एक बड़े ही संपन्न परिवार में हुआ, और उनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और माँ का नाम था स्वरूपा रानी, और पिता पेशे से वकील थे। उनकी 3 पुत्रियाँ थीं और जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे, और वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू के रूप में जो है जानते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश की प्रगति के जो है पथ प्रदर्शक भी बने, और जवाहरलाल नेहरू को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने का मौका भी मिला। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो और कॉलेज की जो शिक्षा वो ट्रिनिटी कॉलेज लंदन तक पूरी करी, और उन्होंने अपनी लॉ की जो डिग्री है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक पूरी करी, और हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर 1912 में नेहरू जी ने जो है बार एट लॉ की उपाधि ग्रहण की, और वे बार में बुलाए भी गए। पंडित नेहरू जी जो है महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, और 1912 में वो कांग्रेस से जुड़े, और 1920 में प्रतापगढ़ के जो पहले किसान मोर्चे को संगठित करने का उनको मौका भी मिला, और 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू घायल हुए, और 1930 में नमक आंदोलन में वो गिरफ्तार भी हुए। उन्होंने 6 महीने जेल काटी और 1935 में अल्मोड़ा जेल में आत्मकथा भी लिखी। उन्होंने कुल 9 बार जेल यात्राएं करी, और उन्होंने जो पूरे विश्व का भ्रमण भी करा, और साथ ही साथ भाइयों अंतर्राष्ट्रीय नायक के रूप में भी उनको पहचान मिली। उन्होंने 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित करा, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गिरफ्तार हुए और अहमदनगर जेल में रहे। वहां उनको 15 जून 1945 को फिर रिहा कराया गया। साथ ही स्वाधीनता और स्वाधीनता की लड़ाई को जो है चलाने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास करा, और साथ ही साथ जो है नेहरू जी के कार्यकाल में जो है लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूती मिली, राष्ट्र को संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की जो स्थायी भाव है वो भी प्रदान हुआ, और साथ ही साथ जो है देश की अर्थव्यवस्था जो है वो भी सुचारू रूप से बढ़नी आगे शुरू हुई। और नेहरू जी जो है वो पाकिस्तान और चीन के साथ जो है भारत के संबंधों को सुधारने की कोशिश करते रहे, और चीन की तरफ उन्होंने मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखा दिया और अचानकता आक्रमण कर दिया, और आज़ादी के पहले गठित अंतरिम सरकार और आज़ादी के बाद 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने, और 27 मई 1964 को उनके निधन तक वे इसी पद पर बने रहे। जवाहरलाल नेहरू जी की जो है 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो ये तुली भाई जानकारी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि।
2: किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
3: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
2: कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
3: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
2: खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
3: 9813173102।
2: कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
4: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
5: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

और भाइयों, इसी फिल्मी लोकगीत के साथ आज के ग्राम संसार कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए श्रोताओं सुनते हैं सैनिकों के लिए कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी सैनिक भाइयों के आपके दोस्त संत कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। आज आपके पसंदीदा गीतों के साथ हाजिर हैं हम। सैनिक भाइयों, आप लगातार देश की रक्षा में लगे हैं दिन रात, और इसी वजह से देश के नागरिक सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। आप हैं तो हम सबका वजूद है। आपको हमारा आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की ओर से सलाम। आइए आपके अपने कार्यक्रम में आपके मनोरंजन के लिए कुछ गीत हम संजो कर लाए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सभी सैनिक भाइयों के लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओ

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

सैनिक भाइयों, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप कड़ाके की ठंड में, धूप में, बरसात में दिन रात सरहद की रक्षा करते हैं। तभी हम घरों में चैन की नींद सोते हैं। आपकी कर्तव्य निष्ठा को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का सलाम। और इसी गीत के साथ आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम जय जवान यहीं संपन्न होता है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम जय जवान, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम स्वरांजलि। गुलदस्ता कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं दोस्तों। गजलें सिर्फ शब्दों का संगम नहीं, बल्कि एहसासों की वो खूबसूरत दुनिया है जहां दिल की खामोशी भी आवाज बन जाती है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम सुनेंगे कुछ ऐसी गैर फिल्मी गजलें जो बरसों से श्रोताओं के दिलों पर राज करती है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की महफिल एक बेहद खूबसूरत और दिलकश गजल के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: दोस्तों, कुछ गजलें दिल के इतने करीब होती हैं कि हर बार सुनने पर एक नया एहसास छोड़ जाती है। मोहब्बत में शिकायत भी होती है, इंतज़ार भी, और कभी कभी एक मीठी सी नाराज़गी भी। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं को बयान करती हुई ये गज़ल आप सभी के लिए

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: तो श्रोताओ, इसी के साथ गुलदस्ता की आज की महफिल यहीं संपन्न होती है। अनुमति दीजिए, नमस्कार। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हम किसी से कम नहीं। दिव्यांग अनिल से दीपक की बातचीत, निष्पादन किया है अमरीक सिंह ने। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
3: श्रोताओं, आज कार्यक्रम हम किसी से कम नहीं में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अनिल जी से, जो गांव कुलाल माजरा, जिला कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। अनिल जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
4: ठीक।
3: अनिल जी, आप हमें अपने आरंभिक जीवन के बारे में बताएं।
4: मैं मतलब मम्मी के पास रहता था, मतलब वहीं पढ़ाई की।
3: कितने वर्ष के थे उस समय आप?
4: मैं तो उस टाइम 1.5 वर्ष का था जिस तो यहां से चला गया।
3: अच्छा। गांव
4: से, तो उनके पास मतलब कोई लाद नहीं थी, तो इसीलिए मैं, मेरे माँ बाप ने दृढ़दार थे, तो उसने मतलब अपना मेरा पालन पोषण ना कर सके टाइम पे, मतलब मैं वहाँ भेज दिया जी। तो मैंने वहाँ से 8वीं क्लास पास की।
3: अच्छा, आपके मामा के कोई बच्चे नहीं?
4: हाँ, सिंहपुरा गाँव है जी ये, मेरे जान सचुंगी के पास
3: जी।
4: तो मैं वहाँ रहता था जी, मैं वहीं पढ़ाई की, वहीं मतलब मैं पालन पोषण मेरा वहीं कराया।
3: आपके मामा जी ने?
4: हाँ, मेरे मामा जी यूनिवर्सिटी में मतलब असिस्टेंट थे
3: जी।
4: छोटा मामा मेरा वकील था जी, कोर्ट में वकील है, नैब सिंह नलवाड़ा जी।
3: अच्छा।
4: एक मेरा मामा लाइब्रेरी में असिस्टेंट था जी।
3: जी।
4: एक मेरा मामा मतलब न्यू है जी, अपना जमीन जमून थी, 2-4 किले हैं अपने, तो उसमें अपना खेती खुती करते थे।
3: तो आप उन्हीं के पास रहते थे, वहीं कार्य करते थे?
4: ठीक है जी। मैं 1.5-2 साल का चला गया था, तो मैं 2000 में आया जी। 2000 में आके फिर मैंने अपना 2003 में शादी होगी जी। शादी हो के फिर अपने न्यू है जी, अपने 2 बच्चे हैं, अपना पेंशन में गुजारा हो रहा है।
3: तो अनिल जी, फिर आप हमें अपनी दिव्यांगता के बारे में बताएं।
4: दिव्यांगता तो न्यू है सर, मतलब हम दिव्यांगता तो मैं मतलब बहुत तंग हूँ जी।
3: क्या क्या समस्या है आपको?
4: मैं मतलब न्यू है जी, अमरूद के पेड़ से गिर गया था जी। गिरने के बाद मतलब रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया जी।
3: रीढ़ की हड्डी में आपको फ्रैक्चर हो गया था, आप एक पेड़ से गिर गए थे?
4: हाँ, पेड़ से गिर गया था जी।
3: जी।
4: तो इसके लिए मैं मतलब माँ बाप गरीब थे जी, तो दाड़ीदार थे, उसने फिर दिखाने में मतलब इतने मतलब खर्चा नहीं था जी, तो इसका लिए मैं मतलब नहीं रह गया था जी।
3: फिर आपके दोनों पैर इस वजह से काम नहीं कर पाते हैं?
4: हाँ, दो ही पैर मेरे मतलब वैसे हैं जी, मतलब चल नहीं पाते, तो मतलब नहीं, मैं बहुत तंग हूँ जी। मतलब ऐसे अभी बैठे बैठे कोई काम करना चाहूँ
3: तो कर लेते हैं?
4: हाँ, कर लेता हूँ जी, या खड़े खड़े जो भी, अपने 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे।
3: फिर रीढ़ की हड्डी का कोई इलाज करवाया आपने?
4: रीढ़ की हड्डी ने मैं दिखाया जी, मतलब ये मलेर कोटले वाले थे कुरुक्षेत्र, तो उसमें मैं दाखिल हुआ जी,
3: जी।
4: तो अपना सारा सूरा लगे जी। उसके बाद गाँव में मतलब एक मतलब बाबा रहता पड़ोसी, मतलब जूती जाती बनाता था, फिर वो मेरे को मतलब करनाला ले गया जी। करनाला उसने पहलवान को दिखाया, मतलब उसने फिर चढ़ चढ़ के मतलब झटके मार मार के मेरे को मतलब इससे भी बेकार कर दिया जी।
3: परंतु इलाज नहीं हुआ, क्योंकि चूंकि कहा जाता है कि झोला छाप डॉक्टरों को नहीं दिखाना चाहिए, या फिर ऐसी जगह से इलाज नहीं करवाना चाहिए जिनको मतलब जो एक रेगुलर प्रैक्टिशनर ना हो।
4: हाँ, इसके बारे में मतलब जिसको नॉलेज ना हो जी, तो इससे मतलब वहाँ
3: आपकी समस्या और बढ़ गई?
4: और समस्या बढ़ गई जी, चलने से पहले मैं थोड़ा चल लेता था,
3: उसके बाद आपको चलना भी बंद हो गया।
4: मतलब उसने अल्ले और रेडिकेट डी मतलब जो मणके थे वो सरक गए जी,
3: जी।
4: तो इसके वजह से मैं मतलब जुड़ गया जी, तो जुड़ने के कारण मतलब फिर मैं
3: चलना फिर ना आपका और भी
4: और ज्यादा मतलब
3: मुश्किल हो गया।
4: हाँ, तकलीफ होगी जी, तो उसके वजह से मैं चल नहीं पाता, तो जैसे भी कान कूद का सहारा लेता हूँ या कोई डंडे डुंडे का सहारा लेके मतलब नहीं हो, थोड़ा थोड़ा आराम से चल लेता हूँ मतलब
3: जी।
4: वो मतलब नहीं आज पूरा नहीं चल पाता, मतलब मैं तंग हूँ जी मतलब।
3: अनिल जी, आप हमें अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं
4: जी। मैं वहाँ से अपना फिर पढ़ा जी, मैं
3: अपने मामा जी के गांव,
4: मामा के गांव में सिंहपुरा गांव है जी, द्रड़ा के पास
3: जी।
4: तो मैं पढ़ा जी वहाँ, मतलब 8वीं करी जी मैंने को, फिर वहाँ जी अपना न्यू है जी, फिर मैं अपना इसकी वजह से मतलब आगे मैं पढ़ नहीं पाया, तो इसकी वजह से मतलब मेरे में
3: समस्या के कारण आप पढ़ नहीं पाए।
4: हाँ, समस्या के कारण मतलब हाँ जी पढ़ नहीं पाया।
3: क्या आने जाने में समस्या आती थी आपको स्कूल में?
4: समस्या में तो मतलब स्कूल में कुछ नहीं थी, मतलब वही बात है, फिर चलने में दिक्कत हो गई थी जी, तो मतलब साइकिल नहीं चला सकता था, पैदल जाके बस स्टैंड पे नहीं जा सकता था, बस में बैठ के चल जा छोड़ने के लिए। मेरे मम्मा थे, दो मतलब बस सर्विस मैन थे, तो अपना आगे उनके लड़के लुड़के आए नहीं थे जी, दो मम्मे थे, मतलब के बाद में मेरे टाइम में शादी हुई उनकी, तो उसके बाद फिर शादी हुई अपने बच्चे उनके छोटे थे, तो इसके लिए मैं वहाँ से पढ़ नहीं पाया जी, तो इसलिए फिर उनका मैंने काम कुम कराया, मतलब जो भी है।
3: अपने मामा जी के गांव में रहे और वहीं पे आपने काम वगैरह किया और सीखा?
4: हाँ, उन्हीं का काम कराया जी, पर उनने मेरे वास्ते मतलब उनने कुछ नहीं किया
3: जी।
4: हाँ जी, आके मैं भी तंग हो गया जी, फिर 2000 में आया, 2000 में आके 2003 में शादी हो गई जी। शादी के बाद अपना मतलब महाराज की दया थे, मतलब जो भी है, मतलब दो बच्चे हो गए, ये बच्चे की पढ़ाई के लिए जी पेंशन है। मेरे परिवार में जी एक मेरी घरवाली है, मैं हूँ, और दो बच्चे हैं जी।
3: क्या नाम है आपके बच्चों के?
4: बच्चों के एक बड़े का तो अंकित कुमार है जी, छोटे का आर्यन है जी।
3: क्या करते हैं आपके बच्चे?
4: वो बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं जी, छोटा यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहे हैं जी, बड़ा बीए कर रहे हैं जी।
3: खूबसूरत नाम भी है आपके बच्चों के, और ये भी अच्छी बात है कि दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और तरक्की की राह पे हैं।
4: बस पेंशन की वजह से जी उनको पढ़ा रहे हैं जी, हम तो तंग रह जाते हैं मतलब,
3: लेकिन उनकी पढ़ाई आप रोक नहीं रहे हैं बच्चों की?
4: बच्चों की तो कह रहे हैं जी, मतलब
3: बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके,
4: आगे बढ़ सके।
3: ये बहुत अच्छी सोच भी है, यदि हम शिक्षा का दामन छोड़ देते हैं तो हमारी तरक्की रुक जाती है।
4: हाँ ठीक है जी, तो आपके पास समझ का मैं मतलब नहीं आज बच्चे पढ़ाने चाहिए उसको, मतलब नहीं हुआ मतलब रोका नहीं जाए, मतलब नहीं आज पढ़े बच्चे पढ़ सकते हैं, मतलब आगे जाके अपना न्यू भविष्य बना सकें, तो अपना न्यू आज बच्चे पढ़ लिख के अपना देश का अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें
3: जी,
4: समाज का जो भी
3: शिक्षित व्यक्ति एक समाज को एक देश को आगे बढ़ा सके
4: जी। ठीक है बात आपकी, तो देश का नाम रोशन कर सके, माँ बाप का और अपने रिश्तेदारों का, जो पड़ोस में पड़ोसी का जो भी जो मतलब।
3: और आपको भी खुशी होगी जब आपके बच्चे तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कि आपने भी जो कार्य आप अपने जीवन में नहीं कर पाए वो आपके बच्चे कर रहे हैं।
4: विकलांग थे मतलब, विकलांग होने के कारण मतलब भाई मेरे माँ बाप ने मतलब हमारे को पढ़ा के मतलब इस काबिल बनाया, तो जी
3: उनको भी ये महसूस होगा कि मेरे माता पिता दिव्यांग थे परंतु फिर भी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करते हुए हमें पढ़ाया और हमें आगे बढ़ाया। अनिल जी, अक्सर देखने में आता है कि एक दिव्यांग व्यक्ति को ना समाज में काफी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
4: समाज में बाबू जी नहीं है जी, लोग कोई अनियमित बातें कहते हैं, ये ऐसा है ये वैसा है
3: जी,
4: ये क्या कर पाएगा, मतलब इनका खर्चा कितना चलेगा, इनके कोई ना रिश्तेदार लवा लगता है, ना पड़ोसी, ना कोई भाई
3: जी,
4: ना कोई ताया चाचा, कोई किसी का नहीं है
3: जी,
4: तो मतलब नहीं, इसके कारण हमारे को बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मतलब लोगों की तू मैं जो भी है सुनने के लिए, तो हमारे बहुत तंग है, मतलब एक मम सुन के अपना चुप रह जाते हैं,
3: इन वजहों से आपको काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।
4: करना पड़ता है जी, चलने के लिए, लोगों की मतलब बुराइयों के लिए,
3: क्योंकि कई बार लोग जागरूक नहीं होते हैं दिव्यांगता के प्रति, या लोगों का जो सोच है वो उस तरीके से विकसित नहीं होती, तो कई लोग इस प्रकार की बातें कर देते हैं, परंतु कुछ लोग सही भी होते हैं,
4: कुछ लोग सही है जी,
3: परंतु आप अपनी मेहनत में लगातार जुटे हुए हैं, अपने परिवार देख रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
4: बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब पेंशन के गुजारे से उनको पूरा मतलब टाइम दे पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए खर्चा दे रहे हैं जी, दुकान खोना उसको जो भी सरकार
3: हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। अनिल जी, आपके शौक क्या क्या है?
4: मेरे तो जी देशभक्ति का शौक है, मतलब जो अच्छा देश के लिए कोई मतलब ऐसा जी गाना, कोई धार्मिक कविता, कोई मतलब धार्मिक मतलब देश के लिए कोई मतलब कोई ऐसा मतलब जो
3: देश के लिए देशभक्ति गाने, कुछ इस प्रकार के आपके शौक है?
4: हाँ जी, फिल्मी मेरे को इतना नहीं है, ऐसा है पंजाब के मतलब जैसे सुधीर सिद्धू मूसेवाले हैं जी, बब्बू है,
3: हंस
4: राज हंस है जी, गुरदास मान है।
3: किस प्रकार के गाने आपको पसंद है, आप हमें तो कुछ गा के दिखाइए।
4: ऐसे प्रकार के गाने जी मैं देशभक्ति के लिए मनोज कुमार क्रांति है, क्रांति फिल्म में था जी
3: ये, हमें थोड़ा सुना के दिखाओ।
4: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश का यारो क्या कहना, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना, यहाँ नित नित मेले लगते हैं बेरोजों की बस्ती में, इस देश का यारो क्या कहना, मतलब ऐसे है देशभक्ति।
3: बेहद खूबसूरती से आपने गीत गाया है और बेहद अच्छा भी गाया है आपने, मनोज कुमार के आपके जो ये गीत हैं ये देशभक्ति गीत आपको पसंद है, तो चूंकि मनोज कुमार जाने भी जाते हैं देशभक्ति की फिल्में करने के लिए। अनिल जी, आपको सरकार से क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई हैं?
4: मेरे को सरकार से जी ये राशन रूशन मिलता है, मतलब पेंशन मिलती है, तो ये दो चीज़ें मतलब और भी जो सुविधाएँ होती है जी, मतलब सरकार से ट्राई साइकिल होगी वगैरह, जैसे मतलब कोई पेंशन होगी, राशन हो गया
3: जी। तो पेंशन कितनी मिलती है आपको?
4: पेंशन जी 3200 रुपये है जी।
3: 3200 रुपये आपकी पेंशन है, तो आपका गुजारा हो जाता है उसमें?
4: बस गुजारा तो बड़ी मुश्किल से होता है सर
3: जी,
4: तो इन्हें धक्के दुखे खा के अपना न्यू जी गुजारा कर लेते हैं।
3: मतलब आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी पेंशन बढ़ाई जाए?
4: हाँ जी, पेंशन बढ़ाई जाए तो ऐसा जी 3200 है जी, 3200 तो ऐसा 5000 के करीब हो जाए।
3: 5000 यदि आपकी पेंशन हो तो आप क्या थोड़ा सा जो जीवन यापन आसान हो जाएगा। तो और अनिल जी, आप हमारे दिव्यांग भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: मैं दिव्यांग भाइयों को, अपने साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी अपने मतलब कोई काम करे, कोई मतलब अपना भविष्य बनाए, तो अपने भी अपने माँ बाप का जिसका भविष्य बनाए, कुछ न कुछ अपना रोजगार करे,
3: मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, दृढ़ निश्चय
4: और देश के लिए कुछ करें,
3: दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े और देश के लिए
4: कुछ करें।
3: तो अनिल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने जीवन की ढेर सारी बातें हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। हाँ, मैं खुश हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब यहाँ आने के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम किसी से कम नहीं, दिव्यांग अनिल से दीपक की बातचीत, निष्पादन अमरीक सिंह। एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के इस विशेष कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका अपना दोस्त संत कौशिक। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे प्यार के कुछ विशेष रंगों की। दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जो कभी मुस्कान बनकर चेहरे पर खिलता है तो कभी किसी मीठी याद की तरह दिल में बस जाता है। हमारे गीत इसी खूबसूरती के साथ न सिर्फ सुने जाते हैं बल्कि उनको दिल से महसूस भी किया जाता है। आज आपके साथ कुछ प्यार भरे, कुछ अपनेपन और रिश्तों की मिठास के कुछ बेहद खूबसूरत गीतों के साथ इस सफ़र को हम बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की महफिल इस बेहद रोमांटिक और चुलबुले गीत के साथ।

दोस्तों, जब कोई दिल में इतना करीब हो जाए कि उसकी जगह सिर्फ दिल में ही बन सके, तो ऐसे ही जज्बातों से सजा ये गीत आप सभी श्रोताओं के लिए।

दोस्तों, प्यार जब प्रकृति की खूबसूरती के साथ मिल जाए तो हर मौसम सुहाना लगने लगता है।

दोस्तों, प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दो दिलों की खामोश समझ में भी होता है।

0: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: दोस्तों, कभी कभी प्यार में मासूमियत और अपनापन इतना खूबसूरत होता है कि हर बात गीत जैसी लगने लगती है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: दोस्तों, चांदनी रात, हल्की हवाएं और साथ हो किसी अपने का तो हर पल यादगार बन जाता है।

दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं संपन्न होता है। फिर मुलाकात होगी कुछ नए एहसासों के साथ, नई बातों और खूबसूरत गीतों के साथ, सिर्फ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र पर। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और संगीत के साथ अपना रिश्ता बनाए रखिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समय है क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी में समाचारों का, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
4: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वही विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आज। इस कार्यक्रम में पहला गीत नाइट इन लंदन फिल्म से, आनंद बख्शी के बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गायक स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अगले गीत में मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की आवाज है। लाट साहब फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी का रचा हुआ है, धुन शंकर जयकिशन की।

0: चांद जरा छुप जा।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
0: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा खैनी बीड़ी सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गाना हमराज फिल्म से हमने चुना है। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, आवाज महेंद्र कपूर की।

फर्ज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपके लिए कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं CID 909 इस फिल्म का गाना, SH बिहारी का लिखा हुआ, धुन OP नैयर की है, गायक कलाकार आशा भोसले और महेंद्र कपूर।

आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक स्वर मुकेश और शारदा के।

कैफी आजमी के बोल खयाम का संगीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आखिरी खत फिल्म का गीत। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: जब चले तू।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह।

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला, तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ,
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी? आमा, बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो, एक चौकरा एक चौकरे गार्डन में घूमता है, तो फिर कबाब में हड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा, तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है? ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा, सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1976 नागिन, सन 1979 जानी दुश्मन और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया, रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रही थी विविध भारती की कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

श्रोताओं, कार्यक्रम चांदनी राती सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके दोस्त संत कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित है और आपके ढेर सारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। जो भी श्रोता इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, 9466021336 पर अपना पसंद का गीत अपने नाम और पते के साथ भेजें। निश्चित तौर पर हम कार्यक्रम में आपके पसंद के गीत को शामिल करेंगे आपके नाम के साथ। आपके मैसेजेस इस कार्यक्रम की जान हैं और इसी से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कृपया नोट करें, कोई भी श्रोता एक से ज़्यादा बार मैसेज ना करें ताकि सभी श्रोताओं के हम मैसेज कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनना चाहते हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जिव्यम जैन। यवतमाल से जयराम सिंगनकर, दिशांत कुमार और अर्पिता, उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, ताशु, अर्नव और सत्यम आनंद। इसके साथ ही हमारे श्रोता जुड़े हैं लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी और ऋतिक। अगला SMS हमें प्राप्त हुआ है, पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान, समीर और सलमा। पाढ़र कबड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री। बुल्हार शाह से शहर से सूरज लोंडे, प्राची और एकलव्य। मोहाली पंजाब से हमारे नियमित श्रोता बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इसके साथ ही ये SMS हमें प्राप्त हो रहे हैं, कंवर कॉलोनी बड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण, श्रीमाली, मीना, श्रीमाली। मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन और दिशा, कुशु। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार। पहलगाम निजामाबाद तेलंगाना से, माफ कीजिए, फुल लॉन्ग, MA वाहिद रुमानी और मोहम्मद जुबैर, जुनेद, मुकरम, नोमन और परिवार के सभी सदस्य। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं काला पत्थर फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का रंगारंग आगाज, चांदनी रातें, आप सभी के मैसेजेस हम तक लगातार पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म मिस्टर नटवरलाल से ये सुपरहिट गीत पसंद किया है जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवानी रतलाम मध्य प्रदेश से। किशन, सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल शास्त्री नगर वीर शहर से हमारे श्रोता जुड़े हैं। संतोष, सार्थक, सामर्थ और शौर्य नामदेव। अगला SMS हमें प्राप्त हुआ है खैल बाजार पानीपत से। नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और श्री नानक चंद मल्होत्रा, ये हमारे नियमित श्रोता हैं। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयू सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन और प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने। अगला SMS गांव जाखूद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा खटक। मलोट पंजाब से हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी सौरभ, साइना शर्मा और निवान शर्मा। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह, चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र। मोहली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत फिल्म मिस्टर नटवरलाल से।

अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया अजय देव तुषार डॉली बेबी पूजा राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राजपैलेस से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा मुन्ना भाई पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू नेहरू नगर से हमारे श्रोता जुड़े हैं अनिल बुरांडे उषा अनुश्री और धनश्री सूरज प्राची और एकलव्य गांव हरुडी झारखंड से तुलसीदास मेहतो कल्पना मनोरमा मनमोहिनी दीनबंधु हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोहर बाई और प्रभुलाल बागड़ी ये हमारे श्रोता जुड़े हैं बागड़ी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर विजय लक्ष्मी और राजेश राकेश रसिता कस्बा मनोर यूपी से मोहम्मद रईस अब्बासी निघत परवीन सरफराज फरदीन और सुहान अगला एसएमएस यह हमें प्राप्त हुआ है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा कपिल ईशान और पूजा परिहार आगे हमारे श्रोता जुड़े हैं नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा से मास्टर अलिम पटेल मुजाहिद और नदीम पटेल आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं आपकी कसम फिल्म से ये सुपरहिट गीत

अभी आपने सुना ये गीत। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। अंबाला से, मोहड़ी अंबाला से हमारे श्रोता जुड़े हैं, बंसी लाल संधु, कबीर सिंह संधु और वरनीत। ये हमारे श्रोता जुड़े हैं संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। चौटाला हरियाणा से दारा सिंह, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा हमारे निमित्त श्रोता हैं। करणवीर हाउस बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दीपेंद्र, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और हमारे श्रोता ये जुड़े हैं निमित आहूजा। नांदेड़ ये ताला महार से शंकरलाल, जयशवाल, गणेशलाल, शुभम और कुमारी दुर्गेश्वरी जयसवाल। अगला SMS डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित, सीमा, सचिन, समर, आर्यन, आरोही, अंजलि, श्वेता, ये हमारे श्रोता जुड़े हैं बहरामपुर टेमा मध्य प्रदेश से। रूपेश, महेश, प्रज्ञेश और प्रतेश संघई महाराष्ट्र से हमारे श्रोता जुड़े हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा, रियाज, समरीन और माहिर नूर। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डेनी और मनीष। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: श्रोतो, आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चांदनी रातें। इन संदेशों के बाद आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं अगला गीत फिल्म शोर से। सुनने की ख्वाहिशमंद हमारे प्रिय श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय गाजीपुर से, गंज चुंडवारा से खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, नवाजिश शेख, दानिश, अमन आफरीदी और राधा नामदेव, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टोमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर, जस्सी, सीता और गीता, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चनाताई, हीरामन, प्रणय और प्रतिभा, गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद, मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नासिया, इब्राहिम, अदीब, हसन, जिला मुरादाबाद से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू और मधु नायक, मुल्तानी ढांडा से संभाजी चौक, न्यू नांदेड महाराज से सुधाकर, गायकवाड़ विकास, प्रीति, आशा, दीपांशली, दीक्षा और शशांक, चौटाला हरियाणा से दारा सिंह, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा,

अगला SMS हमारे श्रोता हैं शास्त्री नगर वीर शहर से, किशन, सबकाल, आशा, सानिया, साईराज और विशाल, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। पत्रोड़ा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मंगल, जनागत, राही, श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु, सुनील, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये मध्मस्त गीत फिल्म शोर से।

श्रोतो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं गांव ही पर सोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी सायरा बानू बाबा शेख शिमर शेख और करिश्मा शेख। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे नियमित श्रोता हैं तिलक राज अरोड़ा पंकज अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा सागर सीताराम आशीष और तमन्ना कांगड़ा। दिग्दर्शक श्री सुधाकर राजे प्रशांत कुमार संचित प्रथमेश प्रणाली सर सानवी और कुमारी कल्पना। अगला एसएमएस जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल और विलिस। फाजिलका पंजाब से भूषण विशु विशाल लाड़ी शालिनी टिवांशी वानी और आरबी खेड़ा। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। अगला एसएमएस छत्रपति संभाजी नगर से राजेश राजदीप राशि और शीतल राजेश। झज्जर हरियाणा से हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर सुरेश अनीता आरती सिया और सोमनाथ गीता ओम सुभाष चंद्र एकनाथ और संगीता। गंगाधर प्रमोद और प्रदीप महाराष्ट्र से हमारे श्रोता जुड़े हैं। मजनू कटीला से कमल बालूजा मधु सागर और सतना मध्य प्रदेश से उमंग आकांक्षा और माही मलिक। झारखंड सुपाही से हमारे श्रोता हैं देवेंद्र राकेश प्रकाश रेशमा दीपाली देवेन। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू और डब्बू। गांव फ्रांसी हिसार से हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मशकीन वीसा वीना चैतन्य मेघा राहुल खुराना रचिता केशु

अगला एसएमएस हमारा मिला है कुरुक्षेत्र से, यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल, कोमल, शुभम, प्रियंका, आंचल, पर्व, प्रवीण, चिराग, रजत, राजेश धीमान। गांव गोंदर करनाल से हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं, किरण पाल, बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी, भगत सिंह, बुम्बक। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, विजय चौहान, तेजस्विनी इंदुरकर, शौर्य, श्रेयेश, अंकिता, अनिकेत चौहान, कोल्हापुर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात से धीरज बी रब्बारी, अभिजीत गावानकर, सरिता, प्रणीता, प्रिंस, अर्जुन, उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता जुड़े हैं। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा और अनस और रेहान, मोहबा बुलंद बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव, जानवी राजपूत, दर्श राजपूत, अगला एसएमएस कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से ये हमारे नियमित श्रोता हैं, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। और ये एसएमएस गांव उगाला जिला अंबाला से ये भी हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्य। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम चांदनी रात यहीं संपन्न होते हैं। अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रही थी कार्यक्रम चांदनी रात तेरी आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए।

0: नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।